0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रपति दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया।
1: परेड में भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था। ये भारत और सेशल्स की करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के अंतर्गत युद्धपोत INS तरकश और सर्वेक्षण पोत INS इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया था। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी के निमंत्रण पर सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर हैं। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच करीबी और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी तथा सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि भी करेगी। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और तरक्की को महत्व देता है। उन्होंने कहा कि मॉरिशस को स्वास्थ्य, संपर्क, सतत विकास और समुद्री संसाधनों के प्रबंधन में योगदान देना जारी रहेगा। दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत के विजन महासागर और पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की नीति के तहत भारत मॉरिशस मजबूत रणनीतिक साझेदारी के महत्व और ग्लोबल साउथ के लिए साझा प्रतिबद्धता पर सहमति प्रकट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया।
2: सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी से मिले इस सम्मान से टिकाऊ विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी के लंबे समय से जारी प्रयास और उनके ग्रीन विजन को मान्यता मिली है। यह सम्मान टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री को मिले ऐसे ही कई सम्मानों की कड़ी में एक और उपलब्धि है। इनमें खाद्य और कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार शामिल है। इस सम्मान से पता चलता है कि सेशल्स हिंद महासागर क्षेत्र में क्षमता निर्माण, पर्यावरण संबंधी कार्यों, टिकाऊ विकास के प्रयासों और साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में भारत की बढ़ती भूमिका को भरोसेमंद साझेदार के तौर पर अत्यधिक महत्व देता है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
3: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि होर्मुज़ जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अमीशा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के

0: बाद व्यापार निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। इस दौरान एथेंस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भारतीय और ग्रीक उद्योग जगत के नेताओं के साथ बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रक्षा, खाद्य और कृषि जैसे विषयों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पदक प्रदान करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता अलंकरण प्रदान करेंगे। ये अलंकरण असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ने 8 जून को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पदक प्रदान किए थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चों के जीवन विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ये कार्यक्रम जन्म से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए घर और समुदाय में ही स्वास्थ्य सेवाएं देगा। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर और मनसुख मांडविया तथा राज्य सरकार के कई मंत्री और विभिन्न देशों के राजनयिक हिस्सा लेंगे।
1: 150 से अधिक विशेषज्ञ और जापान, सिंगापुर, UAE, यूक्रेन और रवांडा जैसे भागीदार देशों के प्रतिनिधि मध्य गुजरात के आर्थिक विकास पर मंथन करेंगे। इसके साथ ही सम्मेलन में आयोजित भव्य प्रदर्शनी के 150 से अधिक स्टॉल, स्थानीय MSME, उन्नत तकनीकी स्टार्टअप और अमूल एवं GFSC जैसे बड़े उद्यमों की क्षमता और नवाचार को प्रदर्शित करेंगे। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, वडोदरा।
0: महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंतर्राज्यीय परीक्षा रैकेट शामिल 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।
2: जांच अधिकारियों ने लीक हुए प्रश्न पत्र के स्रोत का पता लगाने, वित्तीय लेन देन की जांच करने, महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में बेचे जाने की छानबीन कराने तथा इस रैकेट में शामिल अन्य लोगों की पहचान कराने के लिए 10 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की थी। TET परीक्षा जो रविवार 28 जून को आयोजित होने वाली थी, भिवंडी पुलिस द्वारा परीक्षा से 1 दिन पहले पेपर लीक का भंडाफोड़ किए जाने के बाद स्थगित कर दी गई। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ACB ने दवाओं, सर्जिकल सामान और मेडिकल उपकरणों की खरीद में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के आरोप के मामलों में तत्कालीन स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक डॉक्टर वत्सला अग्रवाल और केंद्रीय खरीद एजेंसी के उपलेखा नियंत्रक नीरज चोपड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। उड़ीसा की पूरी तीर्थ नगरी में आज सवेरे श्री जगन्नाथ मंदिर में देव स्नान यात्रा के अवसर पर लाखों श्रद्धालु जुटे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र स्नान उत्सव है।
3: सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भाई बहन देवताओं को गर्भगृह से औपचारिक रूप से स्नान वेदी तक ले जाया गया। वहां वैदिक मंत्रों के उच्चारण, शंख की ध्वनि और भक्ति संगीत के बीच पवित्र जल के 108 घड़ों से उनका स्नान कराया जाएगा। देव स्नान पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मनाया जाने वाला यह त्योहार वार्षिक रथ यात्रा से पहले देवताओं के सार्वजनिक दर्शन का मौका होता है। उत्सव को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बढ़े भूस्खलन से गाई नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है।
4: धेमाजी जिला प्रशासन ने तत्काल जन सुरक्षा परामर्श जारी करते हुए चेतावनी दी है कि यदि अवरुद्ध जल अचानक नीचे की ओर प्रवाहित होता है तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नदी तटों, नालों, अर्द्रभूमियों, तटबंधों तथा अन्य निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों से सरकारी निर्देशों और आधिकारिक सूचनाओं पर लगातार नजर रखने, स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग करने तथा आवश्यकता होने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए तैयार रहने को कहा है। इस बीच बाहरी क्षेत्रों से आए तेज बहाव के पानी ने जिले के जोनाइको डिस्ट्रिक्ट के कई हिस्सों को जलमग्न कर दिया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं दिल्ली, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में कल तक लू की स्थिति बनी रहेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ. रजनीश भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विशेष संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112317107 और 0112334444। खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न कर लिया है। लंदन में निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। ICC महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। उधर आयरलैंड ने दूसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 1 रन से हरा दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
5: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा से जुड़ा समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने प्रधानमंत्री मोदी के शब्द दिए हैं, हिंद महासागर को अवसरों का महासागर बनाना लक्ष्य। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने सेशल्स में कहा समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में छापेमारी का समाचार भी कई समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है, आरोपियों के ठिकानों से संपत्ति के दस्तावेज जब्त। दैनिक जागरण के शब्द हैं, 6 आरोपियों के साथ ठिकानों पर छापेमारी। आरोपी राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के घर से आभूषण और नकदी बरामद। राजधानी दिल्ली में दोपहर में 51 डिग्री वाली तपिश, जून में पहली बार लू। कल और परसों आंधी बारिश का येलो अलर्ट। 2 जुलाई से गर्मी से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद, नव भारत टाइम्स की खबर है। देशबंधु ने बढ़ते तापमान और कम बर्फबारी का समाचार प्रकाशित किया है। गर्मी की मार से तेजी से पिघल रहा हिमलिंग, अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं और प्रशासन की बढ़ी चिंता। हिंदुस्तान ने मानसून में देरी पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, समस्या बढ़ाएगा कमजोर मानसून। पत्र लिखता है, भारत में चावल का पर्याप्त सरकारी भंडार है और वो मुख्य खरीफ फसल में कमी को पूरा कर सकता है, अलबत्ता दलहन और तिलहन पर अल नीनो का असर पड़ेगा। लोकसत्य ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से मची तबाही के समाचार सचित्र दिए हैं। पत्र लिखता है, 1,500 से अधिक विदेशी बचाव कर्मी पहुंचे, चारों ओर नजर आ रहा तबाही का मंजर। ईरान का ऐलान, अगले 30 दिन होर्मुज पर हमारा कब्जा। बहरीन कुवैत पर फिर हमला, राष्ट्रपति ट्रंप ने चेताया, ईरान नहीं सुधरा तो वजूद मिटा देंगे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। राजस्थान पत्रिका ने अनोखा फॉर्मूला शीर्षक से नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के विशेषज्ञों की अपील से जुड़ा समाचार दिया है। पत्र लिखता है, माँ के लिए चाय की प्याली हो, बच्चे की सेहत की रखवाली भी हो। माँ को चाय में फॉलिक एसिड और विटामिन B12 देने का सुझाव, अपंगता की बीमारी से बच सकेंगे नवजात।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त।

Well, listeners, kan program ses kubla tem hoi jaa se, tu kanai program ses te huni bo apna loke Arman Malik laka waste film ase Badla, gid likhya hoise Kumar aur music diya hoise Amal Malik, kintu itu gid na baja ke te mu ekta message rakho hai gina ase, itu likhi gina pata ase Abhijit Bogajan para good morning kuina likhya ase, aru tai likhya ase Hindustan Zindabad kuya ase, duty te asu kintu apna gana khan huni gina, खूब एन्जॉय करि आसु कइसे वेल थैंक यू सो मच अभिजीत अपनी लिखि गिना पठाइ दिया कारणे इतिनिसिना अपनी भी ड्यूटी दे आसे तो मय भी ड्यूटी दे आसे इतिनिसिना कि लगत ड्यूटी करि आसे ते तो मय अपनी कारणे एंटरटेन करि दे आसे गाना गान बजाइना एंड यस लिसनर्स इतु गीत लगत हे प्रोग्राम तो सेस करि आबो किंतु हमय 10 बजे 20 मिनट हलो के अपनी गान हुनि आबो वर्ल्ड न्यूज तार पछि ते 10:30 पर आसे 10 बजे 30 मिनट पर आरजेस चॉइस वेस्टर्न म्यूजिक प्रोग्राम आसे 11 ते आसे वुमेन टाइम प्रोग्राम तार पछि ते 11:30 पर होबो को हिंदी फिल्म सॉन्ग्स गाना दैट इज एसएमएस रिक्वेस्ट प्रोग्राम आसे अपना लोके पसंद करिया हिंदी फिल्म गान प्रोग्राम इति टाइम ते अपनी खान लिखि गना पठाई दिले मय अपनी खान लगा पसंदीदा गाना तो बजाई दिया होबो सो थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर द मैसेजेस इतनी आपको 11:30 लॉक करिया हुआ

वेल यताको ग्राम जसवादी डिस्ट्रिक्टबाट लेखिकन पठाएको छ, द्याट इज मध्य प्रदेशबाट। गुड आफ्टरनुन एफएम ट्रक ओपन फ्यामिली गइन र गाना मागिया छ क्या केहेना फिल्मबाट। र यो मागिया खान लगा ग्रुप लगा नाम आछ बाबु रेडियो लिसनर्स ग्रुप। सो थ्याङ्क यू सो मच बाबु रेडियो लिसनर्स ग्रुप। अपनी खान मागिया गाना त मै बिसारि पाना, किन्तु यो गाना बजाइ दिया छ ए सनम मेरी बाहु बाहु मे अल्का याज्ञिक और कुमार सानू लगा वस्ते फिल्म से क्या कहना।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकी देश सेशल्स की अपनी यात्रा के तीसरे दिन आज विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनायगर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने पीस पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री 3 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले श्री मोदी ने कल सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लिया। ये सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ है। श्री मोदी विशिष्ट अतिथि के रूप में समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू हराइजन से सम्मानित किया गया। श्री मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स और भारत दोनों एक ऐसे विश्व के लिए प्रयासरत हैं जहां विकास अधिक समावेशी हो और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं समकालीन वास्तविकताओं पर ध्यान केंद्रित करें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जन विश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया जा रहा है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुकदमों को कम करना और विश्वास आधारित नियामकीय ढांचे को मजबूत करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एम सुंदरेश और शीलू नाग की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। दिल्ली में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गण

ना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ कल से 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे और पात्र मतदाताओं से भरे हुए आवेदन पत्र एकत्र करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज नई दिल्ली के संसद भवन में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन ने श्री खड़गे को शपथ दिलाई। श्री खड़गे कर्नाटक से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण बड़े भूस्खलन से गाई नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है। अमेरिका और ईरान ने जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई है। इस वार्ता का उद्देश्य हॉर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक दोपहर में लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स 425 अंक गिरकर 76,676 पर और निफ्टी 112 अंक कम होकर 23,944 पर था। फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी।
1: सुदूर रेनबो हेल्पलाइन का आज का अंक सजीव नहीं है, ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका 102.6 FM रेनबो पर। और आज प्लान में हमारा जो टॉपिक है वो हम सभी से रिलेटेड है। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं सुनना भी एक कला है। आज के समय में इस कला को ना लोग भूलते जा रहे हैं। प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ, एक अच्छा लिसनर बनना जरूरी होता है। व्हाई लिसनिंग इज इम्पोर्टेंट, इसी टॉपिक पर रहेगा आज का हमारा रेनबो हेल्पलाइन। और हमारी एक्सपर्ट है, कम्युनिकेशन एक्सपर्ट जस किरण गिल। बहुत बहुत स्वागत है जस किरण।
2: धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में बुलाने के लिए।
1: कैसी हैं आप?
2: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
1: मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो कम्युनिकेशन का है जस किरण। हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से या कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होने की वजह से बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट होती हैं, चाहे पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। और इसी कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा जो पहलू है वो है सुनना। हम दूसरों को अच्छे से सुने, तो क्या कहना चाहेंगे आप?
2: जी मैम, जैसे आपने बोला कि कहा कि कम्युनिकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस है जिसमें बोला भी जाता है और सुना भी जाता है। बोलने और सुनने के बिना एक कॉन्वर्जेशन कम्प्लीट नहीं होता है। पर हो क्या रहा है कि हमेशा से बोलने को इम्पोर्टेंस दी जाती है, बल्कि ये अज्यूम किया जाता है कि सुनना तो हमें आता है। सुनने में क्या है, सुनने में क्या सीखना है? कान में आवाज जा रही है मतलब सुन रहे हैं, जबकि ये समझने की जरूरत है लिसनिंग और हियरिंग में बहुत ज्यादा फर्क है।
1: लिसनिंग एक अलग टर्म है और हियरिंग एक अलग टर्म है।
2: जी बिल्कुल। अब कान में सड़क पे जाते हैं, हजारों आवाजें कान में जाती हैं, कोई हॉर्न बजा रहा है, कोई किसी को बुला रहा है, कोई गाड़ी जा रही है, तो कान में आवाजें जा रही हैं, मतलब कि वी आर हियरिंग राइट। पर लिसनिंग का मतलब है कि आवाज को तो सुनना, बट उसके साथ साथ समझने की कोशिश करना कि कोई कुछ बोल रहा है तो क्या बोल रहा है, उसके पीछे मतलब क्या है, वो जानने की भी कोशिश।

0: विश करना एक लिसनिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है।
1: बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया आपने जसकिरण लिसनिंग का। तो जैसे कि मैंने कहा कि लिसनिंग जो है कला है, इट्स एन आर्ट। तो इसी बारे में आज बहुत सारी बातें हम जानेंगे और सीखेंगे आपसे। तो श्रोता, अगर कुछ जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं 102.6 FM रेनबो के साथ। हमारी टेलीफोन लाइनें खुल चुकी हैं 0112341080 एंड व्हाट्सएप नंबर इज 9868107070। हम एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेंगे और उसके बाद लौटेंगे हमारी जो यंग, वेरी प्रोफेशनल एंड डायनेमिक गेस्ट है जसकिरण गिल के पास।

0: मोहित चौहान की आवाज में फिल्म रॉकस्टार का गाना हमने सुना एंड ये चॉइस थी जसकिरण आपकी। तो जसकिरण, जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है व्हाई लिसनिंग इज इम्पोर्टेंट, तो व्हाई डू यू थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू लिसन?
1: देखिए, आजकल कोई सुन नहीं रहा है और इससे, जैसे आपने पहले बताया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लड़ाइयाँ झगड़े बढ़ रहे हैं, लोग ज़्यादा डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं, लोनली फील कर रहे हैं, कोई बात करने के लिए नहीं है, कोई अपनी मन की बात शेयर करने के लिए कोई नहीं मिल रहा है लोगों को। तो डिजिटलाइजेशन जैसे बढ़ रहा है, सोशल मीडिया के एज में हम रह रहे हैं, हमेशा फोन हमारे हाथ में रहता है, नहीं तो लैपटॉप खुला रहता है, हजारों तरह के डिस्ट्रैक्शंस हैं हमारे आसपास, एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे अंदर होती हैं और हमें परेशान कर रही होती है, बट हम किसी से बात नहीं कर सकते। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है लिसनिंग, किसी को सुनना या किसी को वो स्पेस देना कि वो हमसे बात कर पाए।
0: जसकिरण, हमारा अगला जो सवाल है आपसे वो ये कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स अराइजिंग बिकॉज ऑफ पीपल नॉट लिसनिंग एनफ?
1: जैसे रोटी, कपड़ा, मकान हमारा एक बेसिक ह्यूमन नीड है और हर ह्यूमन बीइंग वी वांट लव, वी वांट टू बी वैल्यूड, राइट, कि हमारी भी कदर हो, वैल्यू महसूस करी जाए। तो ऐसे ही हर ह्यूमन बीइंग चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए। शायद ही कोई इंसान ऐसा होगा जो ये नहीं चाहता होगा, और ज्यादा से ज्यादा लोग अनसुना महसूस कर रहे हैं, उनकी बात सुनी नहीं जा रही है, उसके कारण उनका कॉन्फिडेंस तो लो होता ही है।

0: उसके साथ साथ लोग शट डाउन कर लेते हैं, मतलब किसी से बात ही नहीं करते, सब कुछ अपने अंदर रखना शुरू कर देते हैं, जिससे कि उनको कई बार मानसिक संतुलन भी उनका खराब हो जाता है। लड़ाइयां झगड़े बढ़ते हैं, पेरेंट्स को लगता है बच्चे उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, बच्चों को लगता है माँ बाप नहीं सुन रहे हैं, हस्बैंड को लगता है वाइफ नहीं सुन रही है, वाइफ को लगता है हस्बैंड नहीं सुन रहे हैं। हम किसी कॉर्पोरेट में प्रोफेशनल लाइफ में काम करते हैं, लगता है बॉस हमारी बात नहीं सुन रहा है, बॉस को लगता है भाई मेरी टीम ही बात नहीं सुनती है। तो हर तरफ हो क्या रहा है एक्चुअली में, सब लोग बोल रहे हैं, हर तरफ से टॉकिंग हो रहा है, उसने कुछ बोला, मैंने कुछ बोला, और हमें लगता है कि हमारा कॉन्वर्जेशन हुआ, बट एक्चुअली में उसमें कोई लिसनिंग नहीं हो रहा है, इसलिए हम किसी को समझ नहीं पाते हैं। इससे और लड़ाइयां बढ़ती है, अरे तूने मुझे बोला तो ये बोला कैसे, लड़ाई बढ़ती है, झगड़ा बढ़ता है, तनाव बढ़ता है। तो ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो विच आर देयर बिकॉज पीपल आर नॉट लिसनिंग एनफ।
1: एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनकी बात सुन लेते हैं, नहीं तो ये नाराज हो जाएंगे कि हम इनकी बात नहीं सुन रहे। हेलो
2: सुजाता जी, नमस्कार।
1: नमस्कार, बोलिए।
2: हम आपसे कभी नाराज नहीं हो सकते, धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ।
1: धर्मवीर जी, क्या बात है, थैंक यू सो मच।
2: जो आप लोग हमें जो नए नए कार्यक्रम और नई नई जानकारियाँ सुझाते हैं और समझाते हैं, बहुत बहुत इसके लिए हमारे आपको धन्यवाद, क्योंकि हमें नई नई जानकारियाँ मिल पाती हैं।
1: थैंक यू सो मच। कुछ पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड?
2: जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि हर आदमी अपने अपने अंदर ही गमों में जीता है, अपनी अपनी परेशानियां हैं, सब अपनी अपनी परेशानियां मोबाइल के साथ ही मतलब बांटते हैं, बस कोई परेशानी ही मोबाइल लेके बैठ जाते हैं और अपना कार्यक्रम करने शुरू होते हैं। ये मैंने खुद महसूस किया है कि अगर अपने को कोई टेंशन है या दिमाग में कोई परेशानी है तो हम सबसे अच्छा जरिया सुनते हैं अपना, अच्छा कोई सॉन्ग सुनना शुरू कर देते हैं जिससे अपने आराम से माइंड से सारी टेंशन खत्म हो जाती है। इसके लिए कोई दबाव तो है नहीं, मैं एक्सपर्ट से यही पूछना चाहता हूँ। मैडम नमस्कार, इसके लिए कोई ऐसा कोई दवाई है कि जो हम दवा भी खा सकते हैं कि आराम से अपनी टेंशन दूर कर लें? आपने बताया कि हर आदमी अपना बच्चा भी हमारी बात नहीं सुनता, तो वो बच्चे को हम जबरदस्ती कह तो नहीं सकते कि आप ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि आजकल का उनका अपना फील्ड है। अब पहले के समाज जो था वो अलग था कि सामाजिक कार्यों में जाते थे लोग, आजकल नाटक वगैरह देखने जाते थे, तो समाज के साथ जुड़ना भी तो एक जरिया है, सबके साथ समाज के साथ रहना भी एक अच्छा एक अपना समय काटने वाली बात है, क्योंकि आजकल समाज के साथ कट चुके हैं लोग।
1: जी जी, तो धर्मवीर जी आपने तो इतनी सारी बातें हमें बता दी, मुझे नहीं लगता है कि और कुछ कहने को रह गया है। आपने क्वेश्चन ही आपने आंसर बता दिया हमको, लेकिन जो आपने पूछा है कि कोई दवा भी है क्या, तो जस्ट किरण व्हाट वुड यू लाइक टू से?
0: नमस्ते धर्मवीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में जुड़ने के लिए और आपके सवाल के लिए। देखिए आई विश मैं आपको कोई ऐसी दवा होती और जो मैं आपको बता पाती, पर जैसे सुजाता जी ने बोले कि आपने जवाब भी खुद ही दे दिया है, और ऐसी कोई दवा तो नहीं है, पर यही है कि हम कोशिश कर सकते हैं कि अगर हम अच्छा सुनना शुरू कर दें तो बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहीं पे खत्म हो जाएंगी।
1: तो धर्मवीर जी थैंक यू सो मच अपने अच्छे विचार रखने के लिए और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो जस किरण, यहाँ पर लगता है कि एक ब्रेक ले लिया जाए, उसके बाद हम लौटेंगे।

0: स्वागत है आपका रेनबो हेल्पलाइन में। तो जसकिरण, आपने ये बताया कि परिवार में हम अक्सर देखते हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, हम एक दूसरे को जब सुनना नहीं चाहते हैं, अगर हस्बैंड वाइफ को सुनना नहीं चाहता है, वाइफ हस्बैंड को नहीं सुनना चाहते, हम ऐसा प्रतीत होता है, पेरेंट्स बच्चों को नहीं सुनना चाहते हैं और बच्चे जो है पेरेंट्स को नहीं सुनना चाहते, तो ये पर्सनल प्रॉब्लम्स बहुत सारी क्रिएट हो जाती हैं। तो ऐसा ही एक मैसेज हमें मिला है मनोहर लाल गांधी जी का, गाजियाबाद से लिखते हैं कि छोटे अगर बड़ों को कोई काम की बात या कोई मजाक करते हैं तो बड़े अपने आप में खुद को समझदार मानते हैं, छोटों की बात अनसुनी कर देते हैं। हो सकता है छोटे अगर बात कुछ कह रहे हैं तो बड़ों के फायदे के लिए ही कह रहे हो, लेकिन जो बड़े हैं ना वो अहम में रहते हैं, ऐसे में क्या किया जाना चाहिए?
1: देखिए, जैसे आपने अपने प्रश्न में ही बोला है कि बड़े अपने आप को बड़ा मानते हैं और समझदार मानते हैं, बहुत दफा क्या होता है कि हमारी मान्यता, हमारी assumptions एक बहुत ही बड़ा बैरियर एक्ट करती हैं हमारी लिसनिंग को लेके। हम समझते हैं, और ये हमारा नजरिया है, हम समझते हैं कि हम बड़े हैं, हम समझते हैं कि हम समझदार हैं। तो जब हम ये समझ के साथ या ये मान्यता के साथ हम किसी को सुनने की कोशिश करते हैं, जैसे कि वो बच्चा हो, तो आप ये देखेंगे कि आप पहले ही आपकी लिसनिंग को तो बंद कर चुके हैं, क्योंकि अगर आपको बच्चा कुछ कहना भी चाहेगा तो आपकी जो मान्यता है वो बीच में उसके आड़े आएंगी। तो बहुत ही जरूरी है कि अपनी मान्यता को, अपनी assumptions को साइड में रख के बच्चों के नजरिए से देखने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें कि अगर वो कह रहा है तो क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है। और बच्चे को भी कैसा लगता है जब हम उनकी बात नहीं सुनते हैं या जब हम उन्हें बोलते हैं कि वो मैं तो बड़ा हूं, तुम मुझे ये कैसे बोल सकते हो। तो आप देखेंगे कि जैसे ही आप उनके नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे और अपनी मान्यताओं को हटा के सुनने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत ही अच्छा कनेक्शन बच्चों के साथ भी बना पाएंगे।
0: और यहाँ पर एक बात जो मैं एक्सपीरियंस से अपने कहना चाहूंगी जसकिरण, वो कि कई बार हम देखते हैं कि आजकल जो बच्चे हैं बहुत सी बातों को लेकर जागरूक हैं, जैसे कि स्वच्छता को लेकर या फिर रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करने को लेकर, जैसे कि मेट्रो में जब दरवाजे खुलते हैं तो बहुत सारे बड़े जो है ना अफरा तफरी एकदम से दे पुश इन, तो बच्चे ऐसे में कहते हैं कि मामा प्लीज लेट द पीपल कम आउट, कि आप प्लीज जो रूल्स हैं उनको फॉलो करें, या फिर कागज का टुकड़ा यहाँ फेंक दिया, कूड़ा यहाँ फेंक दिया। लेकिन बच्चों को स्कूल में सिखाया जाता है कि क्लीनलीनेस के लिए हमें क्या करना चाहिए, डस्टबिन में फेंकना चाहिए, तब ऐसे वक्त बच्चे जो है पेरेंट्स को बोलते हैं कि दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट प्रॉपर। तो ये सब बातें हमें बच्चों से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है अगर हम उनकी केयर करें, हम उन्हें उनकी लिसनिंग करें प्रॉपरली।
1: जी बिल्कुल सुजाता जी, जितना हम बोलने से देखिए हम कुछ हद तक सीख सकते हैं। अगर आपको सच में किसी के बारे में कुछ सीखना है या किसी चीज के बारे में या किसी मनुष्य के बारे में कुछ सीखना है तो जब तक आप उसकी सुनेंगी नहीं आप सीख नहीं पाएंगे।
0: एक कॉलर है, हेलो।
2: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार,
2: मैं अनवर बिहारी बोल रहा हूँ फरीदाबाद हरियाणा से।
0: जी बहुत बहुत स्वागत है अनवर जी आपका।
2: मैं आपको और अपने सभी श्रोताओं को और हमारे श्रोता है विशेषकर धर्मवीर जी, मैं उनको भी नमस्कार करता हूँ।
0: जी
2: मैडम, मैं अभी आप दोनों की बातें सुन रहा था, मैं आप लोगों से 100% आपकी बातों से इत्तेफाक करता हूँ। सही बात है कि हम बच्चों की भी बात सुने और उनकी भी इज्जत करें और जो मान मर्यादा है बच्चों को वो हम दें। अब हमारी वाइफ है, मेरी बेटी ने भी मेरे पास फोन किया, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, यहाँ फरीदाबाद हरियाणा में जॉब करता हूँ, तो मेरी बेटी ने फोन किया कि पापा स्कूल से टीम जा रही है और बैडमिंटन का खेल होगा, हम उसे भाग लेना चाहते हैं और मम्मी मुझे मना कर रही है कि मत जाओ, तुम बड़ी हो चुकी हो, क्लास 9 से पहुंच चुकी हो। मैंने कहा वाइफ को बिल्कुल गलत बात, बेटी है अब बड़ी हो रही है, होने दो, अब उसके अंदर जो शौक है उसको उभरने दो। मैंने बेटी को बोला जा बेटी खेल के आ, और वो गई और वो अच्छा प्रदर्शन करके आई वहाँ। तो हमें बच्चों को रोकना नहीं चाहिए और उनकी भी बात को सुनना चाहिए। एक सवाल तो मेरा ये, दूसरा सवाल मेरा ये है मैडम कि आज के डेट में हर शख्स मोबाइल में लगा है, चाहे फैक्ट्री हो, बाजार हो, कहीं भी हो, चार लोग अलग अलग बैठ जाते हैं और मोबाइल में लगे रहते हैं। तो आखिर हमें ऐसा क्या कुछ करना चाहिए कि मोबाइल के प्रति लोगों का इंटरेस्ट कम हो और जो पहले जो गाँव में एक जगह बैठ कर लोग आपस में बात करते थे, उससे मोहब्बत बढ़ती थी, इत्तेफाक बढ़ता था, क्या किया जाए कि फिर से वो पहले वाला माहौल कायम हो।
0: बहुत सुंदर बात कही आपने
1: जी। अनवर जी धन्यवाद आपके प्रश्न के लिए, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा सुन के कि आपने अपनी बेटी को सुनने और समझने की कोशिश की और उनको प्रोत्साहन दिया कि वो खेल पाएं। देखिए, कई बार हमें बच्चों को किसी बात से मना भी करना पड़ता है, पर बहुत जरूरी है कि कैसे मना किया जाए वो सीखना भी बहुत जरूरी है, ताकि उनकी भावनाओं को ठेस भी ना पहुंचे और हम उनकी बात को और उनकी भावनाओं को भी समझ पाए। दूसरा प्रश्न जो आपने पूछा है कि आजकल आप सही कह रहे हैं कि मोबाइल पे सोशल मीडिया का जमाना है, हम लोग मोबाइल पे 24 घंटे मोबाइल पे रहते हैं। देखिए, पहले जैसा माहौल बने ये हम सब चाहते हैं, पर असलियत यही है कि बनना मुश्किल है। पर जो हम कर सकते हैं अपनी तरफ से एफर्ट ही कर सकते हैं कि कई बार जैसे आपका दोस्त आपसे बात करने आता है तो आप मोबाइल पे हैं, मैसेज कर रहे हैं या फिर कोई वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हम उसको बंद करके उसको साइड पे रख दें, बजाय कि हाथ में मोबाइल है और दोस्त को बोल रहे हैं हाँ बताओ किस बारे में बात करनी है या हाँ क्या हाल चाल है, उसको साइड पे रखेंगे, हाँ भाई बताओ अब मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ है, बताओ मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। आप देखेंगे कि उससे इतना, क्योंकि लोगों के ऐसी चीजें मिलती नहीं है कि कोई उनको इतनी अटेंशन दे रहा है, इतना ध्यान रह रहा है, इसी बात से लोगों को बहुत अच्छा महसूस होने लगता है। तो ये जरूर कर सकते हैं, रात को खाने पे बैठे हैं तो मोबाइल वहां पे ना रखें, ताकि एक दूसरे से बात कर सके, पूछ सके कि दिन कैसा निकला, कैसा महसूस कर रहे हो। तो अपनी तरफ से ये एफर्ट हम जरूर कर सकते हैं। आप देखिएगा कि घड़ा देखिए बूंद बूंद से भरता है, एक करेगा कल दो करेंगे चार करेंगे, तो धीरे धीरे ही कोई भी चेंज जो है वो आ पाएगा।
0: शुक्रिया आपका बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जसकिरण, यहाँ पर एक सवाल बनता है कि अगर लिसनिंग इतना इम्पॉर्टेंट है तो क्यों कम्युनिकेशन में, तो व्हाई डू यू थिंक इट्स नॉट टॉट लाइक रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग इज टॉट?
1: जी सुजाता जी, ये बहुत ही दुख की बात है कि हमें स्कूलों में रीडिंग राइटिंग और स्पीकिंग तो सिखाया जाता है पर लिसनिंग नहीं सिखाया जाता है, क्योंकि इसको इतना जरूरी नहीं समझा जाता। ये अजम्पशन बहुत स्ट्रांग है कि सुनने में क्या है। अब देखिए, बच्चे क्लास में, अभी आप भी स्कूल गए होंगे, हम सब स्कूल गए हैं, तो जैसे क्लास में एक टीचर अध्यापक जो है हमेशा बोलेंगे देखते सबसे पहले जवाब कौन देता है, या बच्चे की तारीफ करेंगी, अरे बच्चा यू आर सच अ गुड स्पीकर, इतनी अच्छी स्पीच दी तुमने, इतना अच्छा जवाब दिया। तो हमेशा जो है हम बोलने वाले की तारीफ करते हैं। स्कूल में भी बच्चों की उनकी तारीफ होती है जो अच्छा बोलते हैं, पर उनकी तारीफ कभी नहीं की जाती, अरे बेटा तुम अच्छे लिसनर हो, तुम अच्छा सुनते हो। तो शुरू से ही एक यू नो लिसनिंग हैज ऑलवेज बीन आउट ऑफ द इक्वेशन, आउट ऑफ द पिक्चर। तो हमारे मन में भी, बच्चों के मन में भी हमेशा रहता है कि शायद सुनना, तो अच्छा सुनने की भी ट्रेनिंग होती है, सुनना भी सीखना जरूरी है। तो ये जरूरी है आज के टाइम में, क्योंकि बहुत ही ज्यादा समस्याएं जितनी बढ़ रही हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं जैसे जैसे हम बच्चे बड़े होते हैं। आजकल आप देखिए कॉर्पोरेट्स में भी सबसे ज्यादा डिमांड जो है वो गुड लिसनर्स की है, क्योंकि कोई बात सुनना नहीं चाहता, और बहुत सारी कॉर्पोरेट्स बहुत सारा पैसा लूज कर रही हैं ऑन अ ईयरली बेसिस, क्योंकि लोग जो है कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा है, मीटिंग में बात कुछ होती है करते कुछ है, तो सुनते नहीं है समझते नहीं है। तो लिसनिंग स्किल जो है वो बहुत ज्यादा डिमांड में है, और बहुत ही जरूरी हो गया है कि लिसनिंग को स्कूल्स का कॉलेजेस के करिकुलम में शामिल करना चाहिए। और जैसे कि हम स्पीकिंग की ट्रेनिंग देते हैं, रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग सिखाते हैं, वैसे ही लिसनिंग को भी बच्चों को सिखाना चाहिए।
0: बहुत अच्छी बात कही। और जसप्रीत, मुझे एक बात याद है कि जब हम स्कूल में थे और अगर कोई बच्चा नहीं बोलता है और बहुत ज्यादा चुप रहता है तो उसके पेरेंट्स चिंतित हो जाते हैं कि मेरा बच्चा बोल क्यों नहीं रहा है, कुड देयर बी सम प्रॉब्लम। मुझे याद है मैं बचपन में थोड़ी सी क्वाइट थी, बहुत कम बोला करती थी।

0: थी, तो पेरेंट्स को लगता था ये बोलती नहीं है, ये बच्चा बोलता नहीं है, तो आपको लगता है कि ऑन द कॉन्ट्ररी ऑपोजिट होना चाहिए कि हो सकता है बच्चा सुन रहा है.
1: जी बिल्कुल,
0: दैट्स आल्सो अ गुड हैबिट.
1: जी बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑब्जर्व करते हैं और ऑब्जर्व करके सीखते हैं, पर हम क्या है उनको वो मौका ही नहीं देना चाहते ये देखने के लिए, हम वेट भी नहीं करना चाहते कि शायद ये बच्चा अच्छा ऑब्जर्वर और शायद ये सुनता अच्छा है और ज्यादा इन्फॉर्मेशन रिटेन कर रहा है, शायद वो बच्चा ज्यादा सीख रहा है. हम उसको प्रॉब्लम वो लेबल कर देते हैं कि ये तो प्रॉब्लम है भाई, इसका इलाज होना चाहिए. तो बच्चे को भी लगता है कि शायद बोलने वाला ही अच्छा समझा जाता है.
0: एक कॉलर है, इनकी बात सुने. हेलो.
2: हेलो.
0: हाँ जी.
2: हाय सुजाता जी, मैं धर्मवीर. एक सवाल मेरे मन में अभी आया कि स्कूल में बच्चों को भाषण देना क्यों नहीं सिखाया जाता है? शुरू से ही बच्चों को अगर खड़े होकर भाषण देने कोई भी लाइन दे दी जाए, चार लाइनें, दस लाइनें, क्योंकि जिंदगी में मैंने लाइफ में एक ही बार भाषण दिया था, वो भी अचानक ही किसी ने मुझे खड़ा कर दिया, तो मुझे क्या बोलना मुझे ये नहीं पता था, पर हमने भाषण दिया, बात करी अपनी रखी. तो बच्चों को अगर शुरू से ही अगर भाषण देने की जो एक टेक्निक है जो शुरू से आ जाएगी.
0: जी जी, तो ये तो बात हुई कि बोलना सिखाया जाए, भाषण देना सिखाया जाए. चलिए, ये भी आपकी बात स्वीकार कर दी.
1: जी,
0: साथ में उस भाषण को सुनने की कला भी आनी चाहिए.
1: जी बिल्कुल.
0: तो चलिए धर्मवीर जी, थैंक यू सो मच एक बार फिर से अपने विचार हम तक पहुंचाने के लिए. अब यहाँ पर एक ब्रेक हम लेंगे.

0: स्वागत है एक बार फिर आप सभी का रेनबो हेल्पलाइन में। हमारी कम्युनिकेशन एक्सपर्ट गेस्ट हैं जसकिरण गिल, हमारे साथ मैं हूं सुजाता रथ, और टॉपिक है व्हाई लिसनिंग इज इम्पॉर्टेंट, सुनना क्यों जरूरी है आज की लाइफ में। तो जसकिरण, एक व्हाट्सएप मैसेज है, दिस इज फ्रॉम गुवाहाटी हर्ष की तरफ से। इन्होंने लिखा है कि इफ यू कैन गिव सम टिप्स टू बिकम अ बेटर लिसनर, हाउ कैन वन बिकम अ बेटर लिसनर।
1: जी हर्ष, बहुत ही धन्यवाद इस प्रश्न के लिए। देखिए, बोलना हम बचपन से सीखते आ रहे हैं और अभी भी सीख ही रहे हैं, और पूरा लाइफ लग जाती है तब भी हम परफेक्ट स्पीकर नहीं बन सकते। इसी तरह से बहुत ही जरूरी है अभी से एफर्ट डालना कि हाउ टू बिकम अ बेटर लिसनर। और सबसे पहली बात तो ये है कि स्टार्ट By listening to your own self, अपनी सुनना सीखें और एक्नॉलेज करें कि देखिए मुझे अपनी लिसनिंग स्किल को इम्प्रूव करने की जरूरत है। देखिए, अगर किसी को कोई बीमारी भी होती है और अगर वो उसको दवा दो भी, जब तक वो एक्नॉलेज नहीं करता है उसको दवा की जरूरत है तब तक वो नहीं खाएगा। इसी तरह से पहले एक्नॉलेज करने की जरूरत है कि मुझे ये सीखने की जरूरत है। जब आप अपने आप को सुनना शुरू करेंगे कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आपको कैसा महसूस होता है, या आपकी क्या लिसनिंग हैबिट्स हैं, लिसनिंग पैटर्न्स हैं, क्या आप टोकते बहुत ज्यादा हैं कोई बात कर रहा होता है तो, या क्या आप बहुत सोल्यूशन ओरिएंटेड हैं, किसी ने आपको कोई बात बताई, समस्या बताई, आप जल्दी से जल्दी उसका हल देने शुरू कर देते हैं, तो या फिर आप कोई अपनी बात खत्म करता भी नहीं है और अपने दिमाग में उसका रिस्पांस तैयार करना शुरू कर देते हैं, या आप कोई बात कर रहा होता है तो आपका ध्यान उनके कपड़ों पे होता है, अरे यार इसने कपड़े कैसे पहने हैं, वो बात क्या कर रहा है आपको पता ही नहीं है। तो किस तरह के आप लिसनर हैं ये समझना भी बहुत जरूरी है। जैसे आप अपने लिसनिंग हैबिट्स को, अपनी लिसनिंग गैप्स को, अपने लिसनिंग पैटर्न्स को जैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, तब जरूरी है उस पर काम कर पाना और सीखना, किसी तरह की ट्रेनिंग।

0: ट्रेनिंग लेना कि अपनी लिसनिंग को कैसे इम्प्रूव किया जाए. उसमें बहुत सारे टूल्स सिखाए जाते हैं कि कैसे किसी की बात को समझना चाहिए, कैसी अपनी जो हमारे बहुत सारे देखिए बायसेस और जजमेंट्स होती हैं कि इस तरह के लोग जो हैं वो खराब होते हैं, या क्योंकि बच्चे हैं वो हमें कुछ नहीं बता पाते, बच्चे समझदार नहीं होते हैं. तो हमारी बायसेस क्या हैं, आपकी बायसेस क्या हैं, उनको समझिए और कैसे आप अपने नजरिए को साइड पे रख के दूसरे के नजरिए से कैसे बात को समझ सकते हैं उस पे काम करना शुरू कीजिए.
1: सतीश कामले फ्रॉम परभणी महाराष्ट्र, इन्होंने लिखा है कि मैं इस वक्त अपना काम कर रहा हूँ, आई एम राइटिंग माई ट्यूटोरियल्स एंड वाइल राइटिंग आई एम लिसनिंग टू योर प्रोग्राम. आज आप एक्स्ट्रा 2 घंटे प्रोग्राम कीजिएगा, इज लाइकिंग इट सो मच. तो थैंक यू सो मच सतीश फ्रॉम परभणी महाराष्ट्र. और एक मैसेज और आया है सीमा गांधी का गाजियाबाद से. घर में नई बहू आती है लेकिन अक्सर कई घरों में सास बहू को बात बात पर टोकती है. बेटे को पहला स्थान और बहू को बात का स्थान देती है. बहू अगर मन की बात कहती है तो पति से. ऐसे में सास और बहू को क्या संदेश देना चाहेंगी मैम आप? जसकिरण जी.
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रश्न के लिए. देखिए, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि ये समस्या तो हर एक रिश्ते में, हर एक रिलेशनशिप में है आजकल. तो प्रॉब्लम वही पे आ जाती है. एक तो सास बहू के केस में हजारों तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, बट एक इनमें से ये भी हो सकती है कि बहू और बेटी में जो आज भी हम जितना भी चाहें पर वो फर्क कहीं ना कहीं आ जाता है या हम ले आते हैं. तो जब हम बेटी की बात सुनने की कोशिश करेंगे, वैसे शायद हम बहू की नहीं सुनते हैं या फिर उनके नजरिए से देखने की कोशिश नहीं करते हैं. तो बहुत जरूरी है अपने आप को साइड में रख के, मैं सास नहीं हूं, क्या मैं इसको कैसे, इस लड़की को इंसान टू इंसान कॉन्वर्जेशन कर सकती हूँ, ह्यूमन टू ह्यूमन कैसे कनेक्शन बना सकती हूँ, कैसे इसको और जानने की कोशिश करती हूँ. हो सकता है मुझे 10 चीजें इसकी नहीं पसंद, क्या मैं उन 10 चीजों को साइड पे रख के इसको और जानने की कोशिश कर सकती हूँ या ये समझने की कोशिश कर सकती हूँ अगर इसने ये बोला है तो इसके पीछे इसका क्या मतलब था ये बोलने का, या मैं भी अपने आप को कैसे सुधार सकती हूँ ताकि ये रिलेशनशिप इम्प्रूव हो सके. तो बहुत ही जरूरी है. देखिए, हाँ, हम बोलते हैं कि किसी भी रिलेशनशिप में ट्रस्ट बहुत जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, पर ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग की उम्मीद रखना विदाउट लिसनिंग, मेकिंग एन एफर्ट टू लिसन टू द अदर पर्सन, उसका कोई फायदा नहीं है. समझेंगे तभी ट्रस्ट आएगा, समझेंगे तभी रिलेशनशिप इम्प्रूव होगा.
1: अनुभा का मैसेज लेते हैं. एज अ पेरेंट व्हाट कैन आई डू टू बी अ गुड लिसनर व्हेन माय चाइल्ड इज थ्रोइंग अ टैंट्रम?
0: जी अनुभा जी, धन्यवाद आपके प्रश्न के लिए. देखिए, वही बात आ जाती है कि अगर टेंट्रम भी थ्रो कर रहा है तो बजाय, हम क्या करते हैं, अगर बच्चे ने जिद की तो हम या तो उसको धमकाने लग जाते हैं या हम उसको लालच देते हैं, अरे उठ जाओ ऐसे मत करो, मैं तुम्हें देखो चॉकलेट ला के दूंगी, या फिर हम उसको झिड़क देंगे कि ऐसे करोगे तो एक थप्पड़ लगाऊंगी अगर फिर से ये किया तो. तो क्या होता है कि हम बच्चे कि ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि बच्चा अगर ऐसा कर रहा है तो उसके पीछे क्या वजह है, क्यों बच्चे को कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है, नहीं लग रही है तो बच्चा उसके बारे में क्या कहना चाह रहा है. तो बजाय कि रोकना टोकना शुरू कर दें या उसको लालच कर दें या उसका माइंड डाइवर्ट करना शुरू कर दें, जो कि हम बहुत बार करते हैं, तो उससे क्या है कि जो बच्चे के अंदर फीलिंग्स है वो वहीं दबी रह जाती है, उसको आउटलेट नहीं मिला. तो बहुत जरूरी है कि एज अ पेरेंट उसको एक्नॉलेज करे कि देखो मुझे लगता है कि शायद तुम्हें ये चीज पसंद नहीं आ रही है, या तुम्हें कैसा लग रहा है कि अगर हम ये नया खिलौना नहीं ले रहे हैं या तुम्हें नया खिलौना लेके देंगे तब तुम्हें कैसा लगेगा. तो उसको जानने की, उसके साथ बात करने की कोशिश करे बजाय कि अरे यार ये तो फिर से शुरू हो गया. तो हम ऐसा करते हैं, एक तो वक्त नहीं होता है कि इतना कौन सुने, इसीलिए सुनना मुश्किल है और बोलना आसान है.
1: और अब वक्त है एक बहुत ही प्यारा सा गाना सुनने का. और ये जो कॉन्वर्सेशन है हमारा, जसकिरण मेरा और आप सभी का, रेनबो चैनल 102.6 पर ये जारी रहेगा, लेकिन आफ्टर दिस वेरी ब्यूटीफुल ट्रैक.

0: तो इस बहुत ही खूबसूरत ट्रैक के बाद लौटते हैं रेनबो हेल्पलाइन में. और जसकरण, जैसे कि हम कोई भी बहुत अच्छा म्यूजिक जब प्ले हो रहा होता है या कोई कॉन्सर्ट चल रहा होता है तो हम बिल्कुल खो जाते हैं उसमें. तो कहते हैं कि कोई भी जो संवाद है वो एक तरफा नहीं होता है. अगर मंच पर कोई भी प्रोग्राम चल रहा है, भले ही म्यूजिक का चल रहा हो, डिस्कशन का चल रहा हो, एनीथिंग, तो जो ऑडियंस होती है उसको भी एक अच्छा लिसनर बनकर एक्सप्रेस करना पड़ता है, चाहे वो बॉडी लैंग्वेज से हो, चाहे उसके एक्सप्रेशन से हो. तो इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगी?
1: जी बिल्कुल. कम्युनिकेशन जो है दोनों तरफ से होता है. अगर कोई बोले जा रहा है और दूसरा आदमी

0: लगता है कि लेक्चर बोरिंग है, उसमें इंटरेस्ट नहीं है, अब उसको कैसे सुने, या कोई स्पीच है किसी मिनिस्टर की या कोई ऐसी चीज हमें सुननी पड़ रही है जो कि हमारी मजबूरी है, घर पे कोई आ गया जिसकी बात में हमें नहीं इंटरेस्ट है, पर हम उसकी बात कैसे सुन सकते हैं, क्या सुन सकते हैं? पहले तो यही एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है कि हाँ भाई हम उसकी बात सुन सकते हैं, कैसे हम उस बात को भी एक नई क्यूरियोसिटी, एक जिज्ञासा के साथ अप्रोच कर सकते हैं कि भाई इसमें मैं आज क्या नया सीख सकता हूं, और ये एक्नॉलेज करने के बाद कि शायद मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, शायद मुझे ये चीज अच्छी नहीं लग रही है, शायद मुझे ये अच्छे से नहीं समझ आए, पर फिर भी मैं अगर ध्यान लाके इसको सुनने की समझने की कोशिश करूं तो क्या नया मैं इसमें से सीख सकता हूं, ये बहुत जरूरी है।
1: जैसे कि मैंने कहा बॉडी लैंग्वेज बहुत जरूरी है, हम कोई कॉन्सेप्ट सुन रहे हैं, हमें पसंद आ रहा है तो हम दाद दे, वाहवाही करें और बीच में बातचीत न करें, मोबाइल जो है साइलेंट रखें, बहुत सारी चीजें हैं जो इफेक्ट करती हैं। जी एक कॉलर की बात सुन लेते हैं। हेलो हेलो
2: हेलो
1: हाँ जी
2: हेलो
1: हेलो हाँ जी बोलिए।
2: मैं रवि जोशी मेरठ से बोल रहा हूँ।
1: हाँ रवि जी बहुत बहुत स्वागत है, बताइए।
2: फिर बारिश हुई तो उसमें टेम्परेचर डाउन हो गया, तो मेरा 12 साल का बेटा है वो स्कूल जाता है सुबह 9 बजे, मैंने उससे कहा भी तू गुनगुने पानी में नहा ले, ठंडे पानी में मत नहा। तो बोला नहीं पापा मैं तो जो ना ठंडे पानी में नहाऊंगा, आप बूढ़े हो गए आप नहाइए। अब देखिएगा इतना डिफरेंस। उसके बाद भी स्कूल चला गया, फिर वो जब वापस आ गया आज अभी सुबह अभी वापस आया है तो छींके मार रहा, तो मैंने उसको यही समझाया, मैंने कहा जब टेम्परेचर में इतना डिफरेंस आ जाता है तो वायरस जो होते हैं वो ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, वो थोड़ा समझा इस बात को। सो इज इट दिस कम्युनिकेशन गैप?
0: रवि जी धन्यवाद आपके प्रश्न के लिए। आपको क्या लगता है रवि जी कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, वेयर डू यू सी द गैप हियर?
2: मैं तो उसके स्वास्थ्य के लिए बोल रहा था कि इतना जो है डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है तो कहीं ना कहीं जो है वो उसके शरीर को थोड़ा सा परेशान करेगा।
0: जी
2: जी
0: जी क्या आपको लगता है कि आप का जो अप्रोच रहा है, जैसे आपने बोला कि उसको मैंने बोला कि तू ठंडे पानी से मत नहा, तो आपको लगता है कि आप इसको थोड़ा सा डिफरेंटली अप्रोच कर सकते हैं? जैसे आपने उसको मना करते हैं हम बच्चे को किसी चीज से, तो बहुत बार हम देखते हैं कि बच्चा वो चीज जरूर करता है, तो जहां हम गैप की बात करते हैं अगर हम इस पे थोड़ा सा ध्यान दें कि क्या मैं थोड़ा सा डिफरेंटली इसको ट्राई कर सकता हूं, आपको लगता है कि आपको उससे मदद होगी?
2: यस ऑफ कोर्स। अब यही रहे ना कि अब उसको जब छींके आने लगी तो मैं उसको समझाया, मैंने कहा ये डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर जो है ये वायरल जो है आ गया है आपके अंदर, वो छींके मार रहे हो आप
0: जी,
2: तो थोड़ा थोड़ा समझ गया इस बात को भी, हाँ ये बात ठीक कह रहे हैं पापा
0: जी जी।
2: वही है मतलब कहने का कि ये जो कम्युनिकेशन गैप है ये कहीं ना कहीं से जो है हम दोनों को ही परेशान करता है।
0: बिल्कुल
2: ये तो बात मानने की है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: थैंक यू रवि जी, आपने जो महसूस किया उसे हमारे हम तक पहुंचाया, थैंक यू सो मच। और जसकिरण बहुत सारे मैसेजेस आए हैं लेकिन उनमें वही कॉमन बात है जो हम ऑलरेडी अपने प्रोग्राम में कवर कर चुके हैं। मिसेस धर्मवीर भाटिया हैं रोहतक से, एंड हर्ष ने एक और क्वेश्चन भेजा है कि हाउ इम्पॉर्टेंट इज इट नॉट जस्ट टू लिसन टू ईच अदर बट ऑल्सो टू अवर बॉडी?
0: जी हर्ष जी बहुत ही जरूरी है। देखिए हम लोग अपने आप को आजकल क्योंकि इतना स्ट्रेसफुल टाइम है, हमारी जॉब्स इतनी स्ट्रेसफुल हैं, तो हम अपने आप को पुश करते रहते हैं और बहुत सारे केसेस में हम बर्नआउट जल्दी हो जाते हैं, या थोड़ी सी तकलीफ होती है हमें लगता है कि अरे यार छोटी सी बात है कुछ नहीं होता अभी भी मैं ये कर सकती हूँ। तो क्या है कि अगर हम बॉडी को नहीं सुनते हैं तो हम अपना ही नुकसान करते हैं, और बहुत ही जरूरी है कि अपनी बॉडी के साइंस जो हैं हमें अपनी बॉडी हमेशा देती है उसको रिकॉग्नाइज करके अगर हमें लग रहा है कि अरे यार अभी मुझे थकावट हो रही है, उसको इग्नोर ना करके बल्कि वहीं पे अपने आप को रोकें या कुछ रिलैक्स करने के लिए करें ताकि फ्यूचर में जाके हमारी तकलीफ हमारी दिक्कतें और ना बढ़ें। तो बहुत ही जरूरी है अपनी बॉडी को सुने। हम बाहर जंक फूड आजकल सब लोग खाना पसंद करते हैं, कई बार मैंने देखा है कि कुछ लोग एसिडिटी की गोली लेते हैं फिर जंक फूड खाते हैं। अब उनको मालूम है कि मुझे जंक फूड खाने से एसिडिटी होती है, पर वही है कि अपनी बॉडी की ना सुनते हुए हम अपनी मनमर्जी करते हैं जिससे कि देखिए नुकसान ही होता है आगे जाके।
1: तो पठानकोट से ज्योत्सना जी का मैसेज है कि उन्हें प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, और एक बात दवा की बात किसी ने कही थी जसकिरण, तो मेरे मन में एक बात है कि जब जो हमारे बुजुर्ग होते हैं उनके

0: लिए अगर कोई अच्छा श्रोता बनकर उन्हें समय दे तो ये उनके लिए एक मेडिसिन का काम करती है। यहाँ पर जो है लिसनिंग की कितनी इम्पोर्टेंस है हम और आप महसूस कर सकते हैं। वो टोटली लाइक
1: जी बिल्कुल सुजाता जी, मैं आपसे 100% अग्री करती हूँ। देखिए बड़े बुजुर्गों जो हैं वो ज़्यादा लोनली इसीलिए फील करते हैं क्योंकि बच्चों के पास इतना वक्त नहीं है, तो या फिर अगर वो कुछ कहना भी चाहें तो हम यंगर जनरेशन है या तो अपने फोन पे होती है, अपने कामों में होती है, सुना अनसुना कर देती है, तो उससे उनको खराब ज्यादा लगता है। बल्कि आप देखेंगे हमने कई बार जो हम स्टोरीज सुनते हैं लिसनिंग की ट्रेनिंग के बाद, उसमें यही है कि कैसे कुछ यंगस्टर्स ने एफर्ट किया है अपना कनेक्ट एस्टेब्लिश करने के लिए अपनी दादी के साथ, दादा के साथ, जिसको कभी सुना नहीं था। इनको लगता था कि यार ये तो बहुत खड़ूस है, अरे ये सठिया गई है, कुछ भी बोलती है या फिर हमेशा गुस्से में रहती है क्योंकि इनकी अब उम्र हो गई है। पर उसने इस बार ये ट्राई किया कि वो अपनी अप्रोच को कैसे बदल सकता है। दादी आज आप बात करो, मैं आपकी बात सुनूंगा। और उसकी दादी ने एक दो घंटे इतना बात की है, दिल की पूरी बातें निकाली है और वो रो पड़ी क्योंकि कितने सालों से उनको ऐसे किसी ने सुना ही नहीं था।
0: तो आई थिंक विद दिस ब्यूटीफुल मैसेज आज का प्रोग्राम हम वाइंड अप करेंगे। दिल दिया गल्ला सुनना भी बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच जसकिरण। हमारी एक्सपर्ट थी जसकिरण गिल, कम्युनिकेशन एक्सपर्ट। व्हाई लिसनिंग इज इम्पॉर्टेंट इस टॉपिक पर था हमारा हेल्पलाइन। टेक केयर, बाय बाय। रेनबो हेल्पलाइन का आज का कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया गया। इसी के साथ आज का रेनबो हेल्पलाइन यही समाप्त होता है।
2: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
3: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
4: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
5: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
6: कोयल सी तेरी बोली,
7: हाय
6: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
7: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
6: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
7: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
8: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
3: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: अल्फा जेन,
3: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: आकाशवाणी।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 102.6 आकाशवाणी रेनबो। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे शालिनी, लेकर आ गई हूं प्रोग्राम आशियाना। और दोस्तों, आज आशियाना में बात होगी हिसाब किताब की। भाई, हिसाब किताब जिंदगी में बहुत मायने रखता है, जैसे कि हर रिश्ता भी किसी न किसी हिसाब से जुड़ा होता है। कहीं प्यार का हिसाब नहीं रखा जाता तो कहीं छोटी छोटी बातों का लेखा जोखा रिश्तों में दूरियां ले आता है। इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं उन रिश्तों की जहां दिल का हिसाब दिमाग के हिसाब से कहीं ज्यादा मायने रखता है।

तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे परिवार में हिसाब किताब की। क्या परिवार के सदस्यों से पैसों का हिसाब मांगना सही है या गलत? कई लोग कहते हैं कि रिश्तों में भरोसा होना चाहिए, क्योंकि परिवार में तो भरोसा ही सबसे बड़ी पूंजी होती है। लेकिन जब बात दोस्तों पैसे की आती है ना, तो कई बार छोटी सी जो गलतफहमी होती है वो भी रिश्तों में दूरियां ले आती है। तो क्या हिसाब मांगना अविश्वास है या फिर जिम्मेदारी निभाने का तरीका? आपको क्या लगता है? क्योंकि मुझे तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये जवाब थोड़ा सा सिचुएशन पे डिपेंड करता है, लेकिन कहीं ना कहीं हिसाब बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं आप बच्चों में एक अच्छी आदत डालते हैं, साथ ही साथ एक ऑनेस्टी का भाव भी उनके अंदर आता है कि हिसाब किताब देना है तो कहीं से कुछ गोलमाल नहीं कर सकते।

जो साथी हो, दिल तो चुराया जा सकता है लेकिन हाँ, हिसाब की गड़बड़ी जो होती है ना, वो किसी को बर्दाश्त नहीं होती। इसलिए रिश्तों में भरोसा तभी रहेगा बरकरार जब हिसाब भी होगा बिल्कुल साफ साफ। प्रैक्टिकली देखा जाए तो आज के जो समय में ना कहीं बड़े परिवार हैं, छोटे परिवार भी हैं, खर्चे बढ़ गए हैं तो जिम्मेदारियां भी काफ़ी बढ़ गई हैं। ऐसे में अगर कोई ये कहे कि चलो हिसाब किताब को साफ रखते हैं तो इसे बिल्कुल भी गलत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि साफ बातचीत अक्सर कर रिश्तों को बचा लेती है। तो इसी दिलचस्प मुद्दे पर हम कर रहे हैं आज ढेर सारी बातें आपके अपने प्रोग्राम आशियाना में।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: एक जमाने से कहानी है, सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दिल्ली वालों तैयार हो जाओ,
3: दिल्ली सरकार लेकर आया है मौका।
4: 400 से भी ज्यादा आम, देखने और खरीदने का सुनहरा मौका।
5: जी हाँ, दिल्ली टूरिज्म द्वारा आयोजित 35वां आम का महोत्सव,
4: जिसमें है मैंगो ईटिंग कॉम्पिटिशन पुरुषों और महिलाओं के लिए खास, कल्चरल रंगारंग प्रोग्राम, खान पान और खरीदारी का साथ।
6: 3-5 जुलाई दिल्ली हाट जनकपुरी नई दिल्ली में दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम के रंग में घुलिए, आना ना भूलिए।
7: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
8: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
9: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
10: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
11: आज की रात मजा,
10: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
9: म्यूजिक मस्ती।
12: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
13: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
9: म्यूजिक मस्ती।

102.6 आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आशियाना। और आज आशियाना में बात हो रही है कि क्या परिवार के सदस्यों से हिसाब किताब मांगना सही है या गलत। दोस्तों, इसके प्रैक्टिकल व्यू की तो हमने बात की, लेकिन कहीं ना कहीं एक इमोशनल एंगल भी होता है जहां पर कोई हिसाब किताब के परे आपकी मदद करे। कहीं ना कहीं अपनी पॉकेट मनी में से अगर कोई भाई या बहन मदद कर देता है तो वो बहुत ही ज़्यादा जुड़ाव हो जाता है उसके साथ। लेकिन कई बार हिसाब मांगने का तरीका भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि अगर लहजा प्यार भरा हो तो बात आसानी से समझ में आ जाती है, लेकिन अगर शब्दों में ताना हो तो अपने भी पराए लगने लगते हैं। इसीलिए ज़रूरी है पहले शब्दों को तोलने की और फिर बोलने की, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी बातचीत का लहजा हमेशा ही मायने रखता है। क्योंकि परिवार के जो रिश्ते होते हैं ना, वो एक छोटे से एक बारीक से धागे से जुड़े होते हैं, तो उन्हें प्यार से सहेजने की जरूरत होती है। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी यही चल रहा होगा कि आपके परिवार में आप हिसाब किताब को कैसे मैनेज करते हैं, और कैसे जब बच्चों को किसी सामान को लेने के लिए भेजते हैं ना, तो कैसे उनसे हिसाब मांगा जाता है। सही बोल रही हूँ ना?

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जिसे हमें भेजा है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज जी ने। लिखते हैं,
2: पेड़ धरती के फेफड़े हैं, वे हवा को शुद्ध करते हैं और हमें नया जीवन देते हैं।
3: धन्यवाद आप सबको इस सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
4: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में श्रोता संवाद के मासिक संस्करण का बेसब्री से इंतजार करते हैं। ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है।
3: आप आगे लिखते हैं, कार्यक्रम में सीआईईटी एनसीईआरटी के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्षा प्रोफेसर भारती कौशिक और विमलेश जी की बातचीत प्रशंसा योग्य लगी। कार्यक्रम में समावेशी शिक्षा पर सुनाई गई विस्तार पूर्वक जानकारी बेहद पसंद आई। ये जानकारी रिकॉर्ड करके परिवार के छोटे बड़े सभी सदस्यों को भी हमने सुनवाई
4: जी।
3: इस कार्यक्रम की सभी ने तारीफ की। समावेशी शिक्षा पर विस्तार पूर्वक जानकारी सुनवाने के लिए आभार प्रकट करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है
2: गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, प्यारी बिटिया मीठी, अनाया गुर्जर और बेबी किरत ने। वो लिखते हैं,
3: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। आपका ये कार्यक्रम विविध जानकारी और मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा भाषाई विविधता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इस कार्यक्रम का हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। ऐसी बेहतरीन प्रस्तुति के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। बड़ा खूबसूरत लिखा है,
2: जून महीने के शुरुआती समय में उमंग प्रसारण का श्रोता संवाद कार्यक्रम एक नए अंदाज में प्रस्तुत किया गया जिसने इस कार्यक्रम को अर्थपूर्ण बना दिया और एक प्रकार की नवीनता का संचार किया। सभी श्रोताओं को ये नवीन संस्करण अवश्य पसंद आया होगा।
3: आप आगे लिखते हैं, इस कार्यक्रम की परिचर्चा में आपने समावेशी शिक्षा जैसे अत्यंत प्रासंगिक और समकालीन विषय की ओर सभी श्रोता बंधुओं का ध्यान आकर्षित किया। प्रोफेसर भारती जी ने बड़ी सरलता से और विस्तार पूर्वक समावेशी शिक्षा का परिचय प्रस्तुत किया
4: जी।
3: अर्थ समझाया तथा समावेशी शिक्षा और समतामूलक शिक्षा के बीच का अर्थ स्पष्ट किया। शिक्षा जगत में इन दिनों समावेशी शिक्षा की खूब चर्चा होती रहती है। उमंग कार्यक्रम के मासिक संस्करण श्रोता संवाद में भी इसका विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया। ये जानकर और कार्यक्रम सुनकर बहुत ही सकारात्मकता का अनुभव हुआ। आगे आप लिखते हैं,
2: श्रोता संवाद का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। प्रोफेसर राजेंद्र पाल जी के साथ जितने भी अंक प्रसारित किए गए हैं उन सभी ने श्रोताओं के मस्तिष्क पटल पर एक गहरी छाप छोड़ी है। श्रोता संवाद हमारे और आपके बीच सक्रिय संवाद का एक विशेष सेतु है। आशा है कि उमंग प्रसारण में नवाचार, रचनात्मकता, आपसी संबंध और संवाद का ये क्रम चलता रहेगा।
3: आपको बहुत बहुत धन्यवाद योगेश ठाकुर जी, आपने बड़ी खूबसूरती से श्रोता संवाद कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी है, आपका धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है गोनियाना मंडी भटिंडा पंजाब से गुरप्रीत सिंह जस्सल जी का। लिखते हैं,
2: समावेशी शिक्षा पर आधारित कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। हमारी जानकारी भी बढ़ी और मैं ऐसे शिक्षाप्रद कार्यक्रम जरूर सुनता हूँ। आकाशवाणी भटिंडा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये प्रसारण हमारे लिए प्रस्तुत किया है।
3: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अबासी परिवार के सभी सदस्य और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास। धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से बने रहिए आपके प्रिय शैक्षिक कार्यक्रम उमंग के साथ। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है, ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है?
2: इसका उत्तर है साथियों, हाइड्रोजन और हीलियम गैसें ठंडी होती हैं, लेकिन जब उनके बीच नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो गर्मी पैदा होती है।
3: हमारा दूसरा प्रश्न था, भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की थी?
2: इसका उत्तर है साथियों, भीम बैठका की गुफाओं की खोज प्रसिद्ध पुरातत्वविद विष्णु वाकणकर जी ने की थी, जिसके लिए उन्हें नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
3: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न। हमारा प्रश्न था, कुटुम्बसर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, इन गुफाओं की बनावट ऐसी होती है कि गुफाओं की दीवारें और छत ध्वनि तरंगों को परावर्तित या रिफ्लेक्ट करती हैं।
4: गुफाएं गहरी हैं, इसलिए वहां बाहर का शोर भी लगभग नहीं के बराबर होता है, इसलिए वहां धीमी आवाज भी स्पष्ट सुनाई देती है।
3: और अब हमारा अगला प्रश्न, हमने आपसे पूछा था बोर्रा गुफाओं की खोज किसने और कैसे की।
4: बोर्रा गुफाओं की खोज ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज द्वारा की गई थी।
3: जी, और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों?
4: सिजू गुफाओं में एक पैसेज को टूथ पैसेज कहते हैं क्योंकि वहां चट्टानों की बनावट मानव दांतों की श्रृंखला से मिलती जुलती है।
3: तो साथियों, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर, और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
4: भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है?
3: 8800440559 है हमारा IBRS नंबर, और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। साथ ही साथ CIET NCERT को इंस्टा, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी फॉलो करना ना भूलिए। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओं, हमारा पहला कार्यक्रम है बुधनी गई है जंगल।
4: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है जिसके द्वारा पेड़ पौधों के संरक्षण और पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

0: बहुत थक गया आज तो। बुधनी, अरे ओ बुधनी,
1: आई रे आई। आ गया बुधवा?
0: हाँ।
1: ले आया लकड़ी? आई इतनी सी चुब्बा कहाँ रह गया? अम्मा अम्मा अम्मा देख कितने जामुन लाया हूँ जंगल से। इतना बड़ा पेड़ ढूंढा है मैंने आज जामुन का। कल से रोज जाऊंगा बापू के साथ जंगल, वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं अम्मा। अरे चुप भी कर, क्या करूँ इतने सारे पेड़ों का। तेरा बापू तो एक भी पेड़ ना काट सकता। रोज यही जरी मरी सी सूखी टहनियाँ तोड़ लाता है बस।
0: फिर वही बात, अरे मैं क्यों काटू पेड़ है? जब इतनी सारी लकड़ियों की टहनियाँ ऐसी मिल जाती है, काम तो चल जाता है ना।
1: काम चल जाता है, काम चल जाता है। हाँ नहीं तो, अरे ढेर लकड़ी लाओगे तो इतने सारे पैसे मिलेंगे बेचने से।
0: अच्छा,
1: कुछ कहना करिया, कुछ आड़े पकत के लिए कुछ समझता तो है ना। हाँ।
0: अरे भोली, जब तक जंगल है तब तक आड़ा बखत आएगा ही नहीं। ना लकड़ी की कमी, ना फलकंद की, बीमारी पड़ी तो जड़ी बूटी भी। रही गहना गरिया की बात, तो बुधनी ये जो तू जंगली फूल लगा लेती है ना कभी कभी, उसके सामने सच कहूं सारे गहना गरिया मात।
1: अब ना बहलती मैं तुम्हारी बातों से,
0: कह
1: देती हूँ। हाँ, या तो कल एक बड़ा सा पेड़ काट कर लाओ, नहीं तो मेरा मरा मुंह देखो।
0: अरे अरे रोने लगी। अरे सुन तो, अच्छा अच्छा सुन, आप चुप भी हो जा बुधनी, काट लाऊंगा एक पेड़ बड़ा सा। है तो ये पाप ही, हमारा ओझा भी यही कहता है कि पूरे विधि विधान के बाद ही काटो एक पेड़ और फिर लगाओ 10 पेड़, और पुरखों की भी यही रीत है। मगर तू कलह मत कर, मैं काटूंगा पेड़।
1: बापू दुख मत कर, कल हम पेड़ काटेंगे ही नहीं
0: है?
1: कोई बहाना बना देंगे, ठीक?
0: हाँ यही ठीक रहेगा। अरे तू तो बड़ा सयाना है रे चुब्बा।
1: बातें कर रहे हो दोनों?
0: कुछ नहीं,
1: जरूर मुझे बुद्ध बनाने की बात होगी।
0: हाँ। नहीं नहीं नहीं,
1: अब तो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। हाँ? अपने सामने कटवाऊंगी पेड़।
0: अब
1: तुम लोगों का कोई भरोसा है क्या?
0: नहीं नहीं नहीं, तू क्या करेगी जंगल में जाकर, हम काट लाएंगे ना एक अच्छा सा पेड़।
2: हाँ अम्मा, वहाँ ऐसे ऐसे भयानक जानवर होते हैं, ऐसे ऐसे जानवर होते हैं अम्मा।
1: अरे चुप, जैसे मैं तो कभी जंगल गई ही नहीं। मैंने तो सोच लिया है, मैं जंगल जाऊंगी ही। सुबह जल्दी उठकर सारी तैयारी करनी है, दिन भर का खाना बनाना है। अब चलो खाना खाकर जल्दी सो जाओ।

0: सुबह क्या हुआ बेटा?
1: डर मत बच्चे, मैं यही हूँ तेरे पास।
0: अरे कोई डरावना सपना देखा क्या? क्या सपना देखा तूने?
2: मुझे डर लग रहा है अम्मा।
1: कोई डरावना सपना देखा होगा बच्चे? अरे क्या देखा तूने?
2: अम्मा अम्मा मैंने देखा कि हम जंगल में पेड़ काट रहे हैं और अम्मा पेड़ रोने लगा, मुझे मत काटो मत मारो, मुझे दर्द होता है, मेरी लकड़ी ले लो, पत्ते ले लो, फूल ले लो, फल ले लो, पर मुझे मत मारो, मैं तो तुम्हारा मीत हूँ माँ। माँ उसने ये कहा, उसने कहा माँ मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है अम्मा, और वो रोने लगा। अम्मा अम्मा जोर जोर से रोया, मगर हमने उसे काट ही दिया, काट ही दिया। वो चिल्लाया अम्मा, मैं भी चिल्लाया।
0: चुप्पा चुप्पा,
1: सोचा बेटे सोचा, डर मत। अरे वो तो सपना था। सोचा सोचा बेटा, मैं तेरे पास ही तो लेटी हुई हूँ यहाँ है। सोचा बेटा सोचा सोचा, शाबाश, अच्छा बेटा है ना, चुप्पा तो सोएगा। सोचा सो गया, इसने तो मुझे डरा ही दिया। अरे कैसे कैसे सपने देखता है ये।
0: तो फिर कल पेड़ काटने नहीं जाना ना?
1: क्यों नहीं, बिल्कुल जाना है। जा जा सो जा। अरे वो तो सपना था, उससे क्या होता है। अरे सो जा, सुबह जल्दी उठना है।

0: चुब्बा, अरे ओ चुब्बा, अरे उठ बेटा, बुधवा उठो ना, भोर हो गई, मैं तैयारी करती हूँ चलने की।
1: अरे तो जाना ही पड़ेगा, तू मानेगी नहीं?
0: ना, मैं तो ना मानू। चल
1: चल, तेरी यही हट है तो चल, चल चुब्बा।
0: अरे कुल्हाड़ी तो ले लो, पेड़ के हाथों से काटोगे।
1: अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था, आदत नहीं है ना।
0: आदत नहीं है, ये नियत ना है
1: वो।
0: चल चुब्बा, वो रस्सी उठा, लट्ठों को बांधना भी तो होगा ना।
2: अच्छा अम्मा।
0: अरे अब चलो भी।
1: चलो
2: चलो, चलो।

0: sarei lunghi.
1: तेरी इस जंगल में शेर भी है क्या?
2: अरे शेर तो नहीं है, कोई बघेरा उघेरा होगा। अरे डर मत, ये कुल्हाड़ी है ना, वैसे भी इस तरफ आदमियों का आना जाना लगा रहता है, इससे जानवर इधर नहीं आते।
1: फिर भी
3: अम्मा तू भी चले वापस?
1: ना वापस तो फिर भी नहीं जाएंगे हम। हाँ
3: अम्मा क्या सोच रही है?
1: यही कि कौन सा पेड़ काटना ठीक रहेगा। क्यों बुधवा, ये जामुन कैसा रहेगा रे?
2: ये जामुन?
1: हाँ
2: चलो इसी को काट देते हैं।
3: नहीं नहीं नहीं नहीं अम्मा, इसे नहीं, ये तो फलों से लदा है।
2: हाँ।
3: हर साल फल देता है, इसे मत काटो।
1: हाँ ये बात तो ठीक है, जामुन कहाँ से खाऊंगी। तो फिर उस साल के पेड़ को काटते हैं चलो।
2: अरे रे क्या बात करती हो, वो तो अभी पूरा बढ़ा भी नहीं है, ये तो वैसे हुआ कि जैसे किसी को छुटपन में ही मरना पड़े।
1: अरे बात तो तुम्हारी सच है।
3: तो अम्मा ऐसा करते हैं, वो जो देवदार के बहुत सारे पेड़ है ना, उनमें से एक को काट देते हैं।
1: अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। कितने सुंदर हैं ये पेड़, अरे उन्हें रहने दो। ये रोन का पेड़ कैसा रहेगा बुधवा?
2: ये
1: है भी काफी पुराना, फल भी नहीं है इस पर तो।
2: फूल तो है, फल भी आएंगे, अरे हजारों पक्षियों की भूख मिटाएंगे। नहीं नहीं नहीं नहीं, ठीक नहीं रहेगा इसे काटना। चलो ठीक है, काटना ही है तो ये नीम का पेड़ काट देते हैं।
1: अरे पागल हुआ है, ये नीम का पेड़ तो दवा दारू के काम आता है, कोई बीमारी नहीं जिसका इसके पास इलाज ना हो। हाँ
2: अच्छा, तब तो अरार का पेड़ भी छोड़ना पड़ेगा है।
1: क्यों?
2: इसका भी नीम वाला हाल है, बल्कि ये तो सुना है सबकी किस्मत भी जानता है, इसे कौन काटे।
3: चलो आगे देखते हैं, कोई ना कोई बेकार पेड़ तो मिल ही जाएगा, ऐसा क्या है।
1: हाँ हाँ चलो चलो, आगे चलकर देखते हैं।
2: ये देखो ये पेड़
1: देख लो।
3: अम्मा अम्मा वो देखो ओक का पेड़, और वहीं बबूल भी है। चलो अम्मा काटे
1: चलो, इधर से निकल कर आओ।
3: अच्छा आई,
1: क्या हुआ चुप्पा?
2: क्या हुआ
3: अम्मा? अम्मा कांटा चुप गया आई।
1: अरे दिखा दो
3: अम्मा, लगता है पेड़ कह रहे हैं हमें मत काटो, हमें मत काटो। बापू इन्हें मत काटना, देखो ये रो रहे हैं।
2: ठीक है नहीं काटेंगे। हाँ।
3: देखा अम्मा कैसे लहलाने लगे, जान बचने से खुश हो रहे होंगे है ना।
2: हाँ बेटा ये देखो, ये चीड़, देवदार, ओक, खजूर और तार।
1: हाँ।
2: ये तो है ही सदाबहार, इन्हें काटने से क्या फायदा?
1: अरे नुकसान भी क्या है?
2: बहुत नुकसान है, हमारे पुरखे कहते थे इन्हीं की बदौलत हवा पानी साफ रहता है, बरखा होती है, बाढ़ रुकती है। सोचो हमारी तरह सभी लोग चल दें पेड़ काटने तो कितना नुकसान हो जाए।
1: रहने दो अपनी बातें, कोई और पेड़ ढूंढो। ये कौन सा पेड़ है, ना फूल ना फल?
2: क्या पता, मुझे सबके नाम थोड़े मालूम है, मगर मैं तो इसे नहीं काटूंगा।
1: क्यों?
3: देखो ना माँ, ये पेड़ हजारों लाखों कीड़ों का घर है, उन्हें दूध पिला रहा है।
1: और वो वाला, उसमें तो ना कीड़े दूध पी रहे हैं, ना फल है, ना फूल है, कुछ भी नहीं है उसमें, और ना ही उससे कोई लाभ है, उसे तो काटो कम से कम।
3: नहीं नहीं नहीं नहीं अम्मा, उसे छोड़ दो। देखो अम्मा, इस पेड़ की घनी पत्तियों में सैकड़ों पंछियों का घोंसला है।
2: हाँ।
3: पेड़ कटा तो वो सब बेघर हो जाएंगे। सोचो माँ, अगर हमारा कोई घर तोड़ दे तो हमें कैसा लगेगा?
2: हाँ बिल्कुल।
1: सचमुच इस पर तो कोयल भी रह रही है, बुधवा रहने दे इसको भी।
2: अच्छा।
1: मुझे कोयल का गाना बहुत अच्छा लगता है, तू रहने दे इस पेड़ को तो।
2: ठीक है। अरे सुन, कोयल खुश होकर तुझे धन्यवाद दे रही है बुधनी।
3: अम्मा जिन जिन पेड़ों को तुमने बचा लिया वो सभी तुम्हें दुआएं दे रहे होंगे।
1: मुझे बनाओ मत, मैंने अभी बदला नहीं है अपना इरादा, चलो ढूंढो काटने लायक पेड़। हाँ। लो, इसमें हंसने की क्या बात है, चलो ढूंढो ना।
2: अरे अब कहाँ से ढूंढे, जंगल के सारे पेड़ों को तो तूने बख्श दिया, अब किसे काटे।
1: क्या सारे पेड़ों को बख्श दिया?
2: और क्या।
1: ना जी ना, अभी तो हजारों पेड़ होंगे इस जंगल में।

0: है तो सही, मगर वो सब भी इन्हीं के भाई बंद हैं। जो बात इनके साथ वही उनके साथ।
1: जीवा जीवा जी, अब तो पेड़ नहीं कटेगा, नहीं कटेगा।
2: अरे चुप।
0: क्या हुआ?
2: हाँ रे चुप्पा, हाँ पेड़ अब नहीं कटेगा। तो यही बात थी ना, तुम दोनों शाम को फुसफुसा कर यही बातें कर रहे थे ना, कि अम्मा को जंगल में बहला लेंगे और पेड़ नहीं काटेंगे। है
0: तू समझ गई है?
1: तू भी तो मान गई ना कि कोई भी पेड़ कटने लायक नहीं है। अब तू ही बता किसे काटे।
0: बता?
2: रहने दे रहने दे, तुम दोनों बड़े सयाने हो, मुझे हमेशा ऐसे ही बहला देते हो। मैं जिस भी पेड़ पर हाथ रखूंगी तुम उसी के बारे में ऐसी ऐसी बातें बनाओगे कि मुझे को दया आ जाएगी। हाय रे, मेरी इच्छाएं क्या कभी पूरी नहीं होंगी?
0: होंगी होंगी, जरूर होंगी, मगर ऐसे नहीं।
2: फिर कैसे?
0: चल घर, चलते चलते बताता हूँ कि कैसे।
2: चल। बता।
0: सुन, हम सब मिलकर बहुत सारे पेड़ लगाएंगे अपने घर के आगे, फिर हमें फल मिलेंगे, फूल मिलेंगे, बुलबुले आएंगी, कोयल गाएंगी, गीत गाएंगी, महुआ सींचेंगे, हम फिर मेले जाएंगे, खूब काम करेंगे, हम तीनों मिलजुल कर ताल बनाएंगे, मछली पालेंगे, मछली, फल, सब्जी, महुआ, कटहल बेचेंगे, हाँ, पैसे पाएंगे, बुधनी को देंगे, बुधनी खुश होगी, कलह नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, झगड़ेगी भी नहीं। क्यों बुधनी? तब भी झगड़ेगी क्या?
1: क्यों अम्मा, तब भी झगड़ेगी?
0: बोलना।
2: नहीं रे नहीं, मुझे क्या शौक है झगड़ने का। चल
0: सच्ची।

0: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम अर्जुन का निशाना।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसे पूरा करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए।
2: बात बहुत पहले की है। हमारे देश में एक राजा थे पांडु। पांडु के पांच पुत्र थे जिन्हें पांडव कहते हैं। युधिष्ठिर इनमें सब में बड़े थे। युधिष्ठिर से छोटे थे भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पांचों राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते थे। भीम गदा चलाने में बहुत कुशल थे और अर्जुन धनुष बाण चलाने में। गुरु द्रोणाचार्य समय समय पर अपने शिष्यों की परीक्षा लिया करते थे। एक दिन उन्होंने पेड़ पर मिट्टी की एक चिड़िया टांग दी। फिर राजकुमारों से चिड़िया की आंख पर बाण मारने को कहा। गुरु द्रोणाचार्य ने बारी बारी से अपने सभी शिष्यों को बुलाया। उन्होंने चिड़िया की ओर संकेत करते हुए पूछा,
3: उधर देखो, तुम्हें क्या दिखाई देता है?
2: किसी ने कहा,
4: गुरुजी, मुझे राजकुमार, पेड़ और चिड़िया सब कुछ दिखाई दे रहा है।
2: किसी ने कहा,
5: मुझे पेड़ और चिड़िया दिखाई दे रही है।
2: किसी ने कहा,
6: मुझे चिड़िया के पंख दिखाई दे रहे हैं।
2: अर्जुन की बारी आने पर द्रोणाचार्य ने उससे भी वही प्रश्न किया। अर्जुन ने कहा,
7: गुरुजी, मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है।
2: अब द्रोणाचार्य ने बारी बारी से सभी को बाण चलाने का आदेश दिया। अर्जुन का निशाना तो ठीक आंख पर लगा, किंतु और भाइयों का निशाना चूक गया। द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को बताया,
3: क्या तुम लोग समझ गए कि अर्जुन का तीर निशाने पर क्यों लगा? जिसे केवल लक्ष्य दिखाई दे वही सफल होता है। तुम लोगों को लक्ष्य के साथ साथ और बहुत सी चीजें भी दिखाई दे रही थीं, इसलिए तुम्हारा ध्यान बट गया और निशाना ठीक नहीं बैठा। अर्जुन का ध्यान केवल चिड़िया की आंख पर था, इसलिए उसका निशाना बिल्कुल ठीक बैठा और बाण ठीक चिड़िया की आंख पर लगा।
0: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम अर्जुन का निशाना और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
8: उमंग उमंग उमंग उमंग।
9: This is Akashvani Kohima, FM Tracker Band at 103 MHz.
10: FM Tracker Band.

0: FM 103 megahertz.
1: Hello, good evening, my dear friends, my lovely and awesome listeners. Apni khan sobke program ni swagat kori ase Agreshwani Kohima FM Tracoban 103 megahertz te. Apni khan laga host aur dost Arjitam jan logo dai. And my dear friends, I'm delighted to be with you for the next 1 hour 10 minutes with your special edition of Live Phone in Hindi Film Sounds Show. Aji ami khan jopi jani ase, evening is the perfect time to unwind, relax, and let the magic of timeless melodies brighten your day. So, my dear friends, apni khan jopi jani ase, pick up your phones. Phone number ase 0370-2243036. Aur ek par phone number koi diye ase 0370-2243036. Aur tate apni khan dial kuri kina apni khan laga favorite song request korbo paribo. Though, my dear friends, time na pilabi, apni khan sobe phone na thakina dial kuribi, holi bi ami kani pohila ekta 30 second laga commercial break lo khabo.
2: Online applications are invited from unmarried men and women candidates for grant of short service commission in executive, education and technical branch. Last date for submission of online application is 27 July 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar.
1: Welcome back, my dear friends. Apni khan sob be tuned in Greek Nase Akashvani Kohima FM Traguban 103 megahertz te apni khan laga host aur dost Arjitam jan logo dai. My dear friends, ami khani itia par login ek da program shuru kori di hobo aur itu program apni khan sob bichani ase live phone in program aur apni khani yate call kori na apni khan laga alag alag dedications kan thakile noeli bi ki ba ek da apni khani exclusively apni khani honibo mon jay ase kole apni khan sob bi ami khan ge dial kor kina apni khan request korbo paribo. Phone number ase 0370-2243036 aur ek par phone number koi diye ase 0370-2243036 tade apni khan dial koribi aur apni khan hi bhal lagya laga kana kan ami khan lobote request korbo paribo. To my dear friends, apni khan laga git mane well, yade ami khan laga first lucky caller thaki ase. Let's check out who is the first lucky caller. Hello.
3: Hello, namaskar.
1: Hello, namaskar.
3: Mujhe Rakesh baat kar rahe
1: hain. Okay, Rakesh ji, aaj aap pehle lucky caller hai. Aaj ka kismat kitna badhiya hai.
3: Ji ji, bilkul bilkul. Aaj mera pehla call lag gaya. Bahut khushi ho rahi hai. क्योंकि आज पहला कॉल लग गया तो अब प्रोग्राम सुनने का बड़ा आनंद आएगा.
1: क्या बात है. और पता है प्रोग्राम में स्वागत है और पता है आज कौन सा वाला गीत सुनना चाहूंगा.
3: तारीफार मूवी मिलेगी.
1: तारीफार
3: जी
1: मैं धुन रहा हूँ. तारीफार तारीफार शायद मेरा म्यूजिक बैंक में ये नहीं है.
3: अच्छा ये नहीं है तो कोई नहीं मैं दूसरा मूवी बता देता हूँ क्योंकि कई बार आपके पास मिलता नहीं है. तो साजन की बाहों में.
1: साजन के बाहों में होगा. सजन के बाहों में से कौन सा वाला गीत.
3: उसने कहा है साची का वो हमसे तुमको कितना प्यार है.
1: ठीक है मैं देखता हूँ. कितने सुकून कितना आराम ये वाला.
3: और सच्ची कहो हमसे.
1: अच्छा सच्ची कहो. ठीक है. और पता है किस किस को ये डेडिकेट करना चाहूंगा.
3: सबसे पहले ये गाना आपको डेडिकेट करेगा.
1: थैंक यू.
3: पूरन वर्मा अविनाश तेली और अमल बसमाचारे विमल बसमाचारे रमेश पत्र और राम नरेश सज्जर रमेश प्रजापति तनुश्री और तमाम सुनने वाले श्रोता आशुतोष देवनाथ सीता देवनाथ और सभी श्रोता के साथ ये गाना डेडिकेशन है और आप भी इस गाने को जरूर कीजिएगा.
1: थैंक यू सो मच. जरूर हमें एंजॉय किएगा करेगा. और थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग राकेश जी. और सुनिए आपका रिक्वेस्ट सॉन्ग.
3: धन्यवाद.
1: यू वेलकम. तो माय डियर फ्रेंड्स अमी कानी राकेश अमी खाल लगा रेगुलर लिसनर था कि ऐसे शिमला ब्रा ताई ब्रा ৰিকুৱেষ্ট কৰা গীত আমি খান শুনি হ'ব সজান কে পাহু মে ফিল্মৰা কুমাৰ চানু আৰু সাধনা সৰকাম অৱস্থে মিউজিক দিছে নদীম আৰু শ্ৰাৱণ লিৰিক্স সমীৰ শুনি কিনা এনজয় কৰিবি মাই ডিয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ

0: Well, my dear friends, আমি খেলো the next caller থেকে আছে. Hello.
1: Hello.
0: Hello. Who is calling?
1: Prem Singh Sisodia, Gram Basura, Tehsil Nagda Jila Udyan Singh.
0: Okay, Prem Singh Ji, program mein swagat hai. Aur bataiye, kaun sa wala geet aaj suna jaunga?
1: Aaj hum aapki pasand ka geet suna chahenge.
0: Mera pasand?
1: Ji haan, bade dilon se aapse baat ho rahi hai, to aaj hum aapki pasand ka sunenge.
0: Acha, theek hai.
1: Ji.
0: Theek hai, to
1: aapke liye हमने एक ऑप्शन दिया है और वो ऑप्शन ही आपको गोविंदा का गीत सुनाना है. हमें
0: गोविंदा का गीत.
1: जी हाँ.
0: मेरा ये आप अगर गोविंदा का गीत सुना जाऊंगा तो आप फिल्म का नाम पता ना पड़ेगा.
1: तो फिर आप कोई सा भी सुना दीजिएगा आपकी पसंद का.
0: मेरा पसंद का.
1: जी
0: अच्छा ठीक है. मेरा पसंद का एक है कभी अलविदा ना कहना. ये फिल्म से मितुआ शंगा महादेवन शफकत अमनत अली का आवाज में ये गीत है. मेरा एकदम बसंत गीत है. तो यही गीत आपको सुनाई दूंगा और पूरा सुनने वाला श्रोताओं की भी ये डेडिकेट रहेगा. राइट
1: जी बिल्कुल सभी सुनेंगे. और आपको बताओ जिनका कॉल नहीं लग पा रहा है ना उन्हीं के लिए भी एक डेडिकेट रहेगा. और भगवान सिंह परमा लोकेन्द्र वर्मा आशुतोष अभिनय संगीता जी तनुश्री महाराष्ट्र से हैं, सुनील जय गोपाल से रमेश टेलर हैं और जो भी सुन रहे हैं सभी के लिए डेडिकेट रहेगा. और उसमें आपके लिए और आपके यहाँ से एक मैडम जो कार्यक्रम देने आते हैं ना उनके लिए भी रहेगा.
0: जी जी जी थैंक यू सो मच प्रेम सिंह जी. और आज क्या क्या काम किया था बताओ.
1: जी अभी सोयाबीन की फसल लगाई आज हमने.
0: जी
1: ट्रैक्टर चलाया खेत में.
0: अच्छा
1: हाँ जी. और बरसात भी हुई लेकिन कम हुई बट सोयाबीन की फसल हमने लगा दी है.
0: अच्छा
1: अभी वेट कर रहे हैं पानी का. जैसे ही पानी गिरेगी सोयाबीन की फसल उग के तैयार हो जाएगी हमारी.
0: अच्छा उसका पूरा मतलब हार्वेस्ट तक कितना टाइम लगता है, कितना समय, कितना दिन लगता है.
1: जी वो 3 महीने में पक के हमारे घर में कट के आ जाती है.
0: अच्छा दो बहुत.
1: जी हाँ
0: तो थी
1: और उसके बाद में फिर आपको बताया गेहूँ लहसुन और मटर की फसल लगाई जाती है हमारे यहाँ पर.
0: हाँ हाँ हाँ ठीक है बहुत गुड. थैंक यू सो मच इसका जानकारी के लिए. और सुनो आपका सॉन्ग ठीक है.
1: थैंक यू सो मच.
0: ओके यू वेलकम बाय. तो माय डियर फ्रेंड्स अमी खलनागा रेगुलर लिसनर थकी आसे प्रेम सिंह ससुदिया ताई उज्जैन मध्य प्रदेश पर थकी आसे और ताई एकता फार्मर भी थकी आसे और ताई कुआ निचिना ताई एकता सोयाबीन लगा फसल लगे लगा बोलिए थकी आसे कोई आसे अमी कंसो भी भाल भर लगाई दी किना भाल भर हार्वेस्ट कोई दी भी क्योंकि ना तुला प्रार्थना रखी थकी वो और इतने लोगों ताई अजीत बोले मुझे लगा चॉइस सॉन्ग एकता हुनी बो कोई তো মই মই বেশি ভাল লাগে লাগা একটা গীত আপনি খান সবকে শুনাই দিয়েছে আর আমি খান সব মিলে কি না শুনিয়াব কবি আলবেদা না গেহেনা ফিল্ম রা শঙ্কর মহাদেবন শফাকত আমনাদ আলী আর ইয়েস তাই দুজন লাগা অবস্থায় আমি খান শুনিয়াব. মিউজিক দিছে শঙ্কর ঈশানর লয় লিরিক্স জাভেদ আক্তার শুনি কিনা এনজয় করবি মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস.

0: Well, my dear friends, we have the next caller with us. Hello.
1: Hello.
0: Hello. Who is calling?
1: Thank you, namaskar.
0: Namaskar. Who is on the line?
1: मैं रमेश प्रजापति ग्राम माया पेंशनवर्ती निवासी हूँ, रेम के से बोल रहा हूँ।
0: रमेश जी, प्रोग्राम में स्वागत है। और आज लगता है थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है
1: जी। मेरा कल से तबीयत खराब चल रहा है, दस्त वगैरह लग रहा था, दस्त लग रहा था, तो तबीयत ऐसी गड़बड़ हो रही है।
0: आज का चेहरा में मुस्कान नजर नहीं आता है
1: जी।
0: अच्छा, बाय द वे, प्रोग्राम में स्वागत है और बताइए आज कौन सा वाला गीत सुनना चाहूंगा।
1: गंगा जमुना है क्या?
0: हाँ, गंगा जमुना है।
1: दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गया रे।
0: और गंगा जमुना से क्या क्या पुला था?
1: दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गया रे।
0: दो हंसों का, यस, लता मंगेशकर आवाज में, राइट
1: जी।
0: और बताइए किस किस को ये गीत डेडिकेट करना चाहूंगा।
1: सबसे पहले तो आपको
0: थैंक यू
1: भगवान सिंह परमार है, पूरन वर्मा जी है, गजराज लोरी जी है, केसरी सिंह राजपूत है, वांगीलाल चंदेल है, चरण सिंह सिसोदिया है, धर्मवीर है दिल्ली से, लोगन वर्मा है उज्जैन से, आशुतोष जी है संगीता जी है, पूर्णमा जी है विजयपुरम से, पूनम जी है कानपुर से, अविनाश जी है राकेश जी है शिमला से, शिवा विदिशा से और शिमला से, विमल भस्मकारी, अमल भस्मकारी, गोल्डी जी और अमर सिंह साहू जी, रमेश पात्रे जी, भाई को मुंडा जी और रंकु विले मेथा।
0: अच्छा, रंकु विले जी। रमेश जी, आप इतना स्पीड से मतलब ये नाम लेता है, कभी कभी ये लेकर ऐसा पढ़ता है या ऐसे
1: लिखा हुआ है?
0: अच्छा, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और आज का दिन कैसे रहा?
1: बढ़िया, आज मार्केट है, अच्छे कपड़े भी आए, दुकान में बढ़िया है आज।
0: क्या बात है, तो ठीक है, इसका खुशी खबर के साथ आप सुनिए आपका ये जो रिक्वेस्ट सॉन्ग है, ठीक है
1: जी। धन्यवाद,
0: थैंक यू, धन्यवाद, बाय। तो माय डियर फ्रेंड्स, रमेश प्रजापति मध्य प्रदेश पर मिखल नगर रेगुलर लिसनर और रेगुलर कॉलर थकी আছে আর তাই রিকোয়েস্ট করলা গীত আমি খান হুনি আব গঙ্গা যমুনা ফিল্ম লতা মঙ্গেশকর বস্তে মিউজিক দিছে নওশাদ লিরিক্স সাকিল পাথায়ুনি আর তাই নাম লো সবকে এই গীত ডেডিকেট করে দিয়েছে হুনি কিনা এনজয় করবি মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস।

0: Well, my dear friends, আমি খান লগতে নেক্সট কলাৰ থাকি আছে। হেল্ল' হেল্ল' হু ইজ কলিং?
1: নমস্কাৰ
0: নমস্কাৰ, কোন বোল ৰা হে?
1: এক ছেকেণ্ড, আৱাজ কম কৰ দো মোবাইল কা।
0: জি
1: হাঁ জি স্যার, উদয়পুর রাজস্থান সে দিলীপ পাহুজা বাত কর রহা হুঁ স্যার।
0: ওকে দিলীপ জি, প্রোগ্রাম মে স্বাগত হ্যায়। আর আজ আপ পহলে কল করতে হ্যায় ইয়া?
1: सर आज मैं जुड़ा पहली बार हूँ
0: जी,
1: लेकिन हमारे एक मित्र हैं भगवान सिंह जी परमार
0: जी। जी
1: हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें वो डेली अपडेट डालते हैं।
0: क्या बात है,
1: तो मुझे क्या पहले सुनने में अच्छा लगता है।
0: क्या बात है, थैंक यू सो मच। और दिलीप जी प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। और पता ही आज कौन सा वाला गीत सुना चाहूंगा?
1: सर जब भी मैं पहले कहीं किसी भी आकाशवाणी से जुड़ता हूँ तो मुझे सीमा पिक्चर का और मन्ना डे साहब का गाया हुआ गाना बलराज सहनी जी पर फिल्माया हुआ यही याद आता है कि आकाशवाणी चीज ही ऐसी है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम।
0: क्या बात है, फिल्म का नाम पता है?
1: सीमा।
0: सीमा
1: जी,
0: ठीक है मैं ढूंढ रहा हूँ। और टाइटल सॉन्ग बताइए।
1: नहीं टाइटल सॉन्ग नहीं है ये,
0: मतलब सीमा फिल्म से कौन सा वाला गीत, गीत का बोल बताइए।
1: तू प्यार का सागर है।
0: तो प्यार का सरकार है, ठीक है। और किसी का नाम लेना चाहूंगा, किसी को ये डेडिकेट करना चाहूंगा?
1: तो अभी क्या मैं ऑन ईयर आ चुका हूँ सर?
0: हाँ क्यों नहीं,
1: ओ
0: क्या बात है, आपका आवाज पूरा देश भर सुन रहा है। पता है किसी को कोई नाम लेना चाहूंगा?
1: उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा सर।
0: हाँ प्लीज गो अहेड।
1: दूर रहकर भी हमसे वास्ता रखना, मुलाकात न सही पर बातों का सिलसिला रखना, छोड़ो तुम आसमां को ये मेरी तमन्नाएं, पर हम तक वापिस आने का ये धवनी ताल की तरंगों का रास्ता याद रखना।
0: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, थैंक यू सो मच फॉर द चैरी
1: सर। और इस गाने को तीन जने मेरे मित्र हैं जो मेरे दिल के बेहद ही करीब रहते हैं
0: जी।
1: सबसे पहले आप,
0: थैंक यू सो मच।
1: सेकंड नंबर पर मैं,
0: क्या,
1: और तीसरा नंबर पर नागालैंड से आकाशवाणी कोहिमा सुनने वाले जितने भी मेरे साथी भाई बहन हैं वो सभी।
0: क्या बात है, थैंक यू सो मच दिलीप जी, आपसे बात हुआ बहुत अच्छा लगा।
1: मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा सर।
0: ऐसे ही चूरते रही ना, ठीक है
1: जी, बिल्कुल सर।
0: ओके थैंक यू, बाय बाय।
1: थैंक यू, बाय सर, बाय बाय।
0: क्या हुआ, वेलकम, बाय। तो माय डियर फ्रेंड्स, अमी खान लगा लिसनर थकी से दिलीप তাই রাজস্থান রা কল করেছে আর আজি পয়লাভার কল করে আছে। আর তাই লাগা আওয়াজ শুনে কিনা আর তাই লাগা ইটু নিচিনা খুশি ভাল লাগা খোদা গান শুনে কিনা বেশি খুশি পাই আছে। তো আমি এখান সব মিলি কিনা শুনি আব তাইবরা রিকুয়েস্ট করে লাগা গীত সীমা ফিল্ম রা মানা দে গোয়া গীত আর খরচ মিউজিক দিছে শঙ্কর জয় কিষাণ লিরিক্স শৈলেন্দ্রা শুনে কিনা এনজয় করবি মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস।

0: Well, my dear friends, আমি খেলা করে নেক্সট কলার থাকি আছে। হ্যালো হ্যালো,
1: জয় মাতা দি,
0: জয় মাতা দি।
1: মেরা নাম হ্যাঁ পূরণ বর্মা, পূর্ণিয়া সে বাত কর রহা হুঁ, ডিস্ট্রিক্ট জয়পুর রাজস্থান, গাঁও কা নাম আঞ্চমল বগলা।
0: জি পূরণ বর্মা জি, প্রোগ্রাম মে স্বাগত হ্যায়। অর আজ পতা চলা কি মেই আপ আপকা জো হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ হ্যায়,
1: জি জি,
0: ও হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ মে আপ জব হামারা আপনা ইয়ে প্রোগ্রাম কার্যক্রম শুরু কিয়া থা,
1: জি জি,
0: উসমে আপ লিখ দিয়া।
1: হ্যাঁ মানে মানে মানে ও ভগবান সিং পরমান কে ও লিখে থে স্যার।
0: আচ্ছা আচ্ছা, ভগবান সিং পরমান জি, ঠিক
1: হ্যাঁ জি
0: ঠিক হ্যায়। তো
1: পতা ও ও গ্রুপ মে জুড়ে হ্যায় তো কোই ভি কার্যক্রম কি জানকারি হ্যায় না ও দেখতে রহতে হ্যায়, হর সপ্তাহ কে পাস জুড়ে রহতে
0: হ্যায় জি। লেকিন আপ আন্ধা হ্যায় অর আপ কেসে উসকা মতলব ইস্তেমাল করতা হ্যায়?
1: जी सर, मैं कीपैड का मोबाइल है तो उससे मैं थोड़ा बहुत अनुभव है, तो उससे मैं 2016 से आकाशवाणी केंद्र पे मैं जुड़ा हुआ हूँ। और कोई ना वो पहले आपका कार्यक्रम बहुत पुराना सोता हूँ मैं, तो पहले जी 7:30 बजे से 8:30 बजे तक आता था ना पहले, 2018 से पहले
0: जी,
1: उसके अंत में लगा रहा हूँ कोई ना पे कॉल।
0: क्या बात है क्या बात है। तो पता ही आज कौन सा वाला गीत सुनना चाहूंगा, फिल्म का नाम बताओ।
1: जी फिल्म का नाम रहेगा वो किस्मत।
0: किस्मत हाँ,
1: नई वाली है वो आर्यन गामा।
0: किस्मत नई वाले?
1: हाँ जी
0: नई वाले। हाँ
1: कौन सा वाला गाना है? वारी हंगामा कैसे हुआ?
0: वारी हंगामा ये वाला शायद मेरा पास नहीं है। किस्मत नया वाला, नया वाला मतलब कौन सा वाला साल का होगा? यह मैं सुनीत जोहान का और आनंद राज आनंद का है।
1: नहीं उसमें उदित नारायण की आवाज थी सर।
0: तो ये वाला मेरा पास नहीं है, उपलब्ध नहीं है।
1: चलो चलो फिल्म का नाम रहेगा हंगामा।
0: हंगामा
1: यस
0: ओके
1: है।
0: हंगामा ये मेरा पास शायद ये भी नहीं है।
1: तलाश।
0: तलाश
1: यस,
0: तलाश हो सकता है। तलाश तलाश तलाश भी नहीं है यार।
1: लग नहीं है?
0: यस नो।
1: तो फिर फिल्म का नाम रहेगा घरवाली और बाहर वाली।
0: हाँ घर वाले और बाहर वाले।
1: हाँ जी
0: घर वाले और बाहर वाले, घर वाले और बाहर वाले ये भी नहीं है, सॉरी।
1: तो फिर फिल्म का नाम रहेगा उफ ये मोहब्बत है, ये मिल जाएगी?
0: उफ ये मोहब्बत है।
1: हाँ
0: जी
1: हाँ
0: है
1: कौन सा उसमें गाना है? छत पर आके उम्र को टीचर बन के ये गाना है आपके पास?
0: छत पर आके
1: टीचर बन के तुम मुझे पढ़ाया करो।
0: मैं आपको

0: पढ़ के सुनाता हूँ।
1: जी
0: उतरा ने उतरा ना दिल में गोई एक है, दीवानी दीवानी एक है, तेरे लगन लगे एक है, हाँ मुझे तुमसे मोहब्बत है एक है, पलमा कदर ना जाने एक है, मेरे जहाज पे आया करो एक है।
1: हाँ यस यस ये
0: अच्छा ये बोला।
1: हाँ मेरे साथ पे आया करो ना
0: अच्छा ठीक है। और पुरान सिंह वर्मा जी,
1: जी
0: जब आप लोग ये वाला मतलब ऑफिशियल टाइटल यहाँ में जो होता है, अगर
1: जी
0: आपको वो वाला नहीं पताने से हम लोग ढूंढने में बहुत दिक्कत लगता है।
1: हाँ जी हाँ जी सर वो तो है
0: इसलिए आपको बारह के मतलब आपको सुनाता हूँ ना।
1: जी जी
0: ठीक
1: क्योंकि
0: है,
1: हमको भी सर दिक्कत होती है जो देखने वाले होते हैं ना तो सर वो फिल्म का नाम पढ़ देते हैं पर हमको तो याद करके
0: क्या
1: रखना
0: बात है।
1: पड़ता है सर
0: हाँ वो सही है। एनीवे किसी का नाम लेना चाहूंगा?
1: जी मेरा दोस्त है ना सबसे पहले तो आप है
0: थैंक यू।
1: और मेरा दोस्त है राकेश है भगवान सिंह परवान जी है अविनाथ जी है रमेश प्रजापति जी है गोल्डी बाई है अमल है बिमल है शिवा लोहार है और कोरोना के जितने भी कॉलर है अमल बिमल और संगीता जी आशुतोष देवनाथ और तमाम श्रोता जी इसका नाम लेना भूल गया उन
0: हाँ
1: श्रोताओं के लिए और
0: ठीक
1: रमेश पात्र जी भी है
0: ठीक है ठीक है। पूरन सिंह जी थैंक यू सो मच, सुनिए
1: थैंक यू
0: आपका
1: सर
0: रिक्वेस्ट सॉन्ग। तो मेरे फ्रेंड्स अमी खन्ना का रेगुलर लिसनर था कि ऐसे राजस्थान ब्रा पूरन सिंह वर्मा दाई रिक्वेस्ट कर लगा कि अमी खन हुनी अब गुरुदास मान और कविता कृष्णा मूर्ति अवस्थे उफ ये मोहब्बत फिल्म ब्रा। म्यूजिक दिस निखिल विनय, लिरिक्स विपिन हांदा, हुनी के ना एंजॉय कर भी माई डियर फ्रेंड्स।

0: Well, my dear friends, we have the next caller with us. Hello.
1: Hello, sir. Namaskar.
0: Hello, namaskar. Who is on the line?
2: Giram, Hirapur, Jilla, Sihor, Madhya Pradesh, se Bhagwan Singh Parmar bol raha hu, sir.
0: Okay, Bhagwan Singh Parmar ji. Program is
2: welcome. Aur sir, mere baare mein aap pooch rahe the ki Hello Farmaish Ekta Radio Group mein aap hi jude hue hain.
0: Ji, ji, ji. Aapne likha hua tha.
2: Ji, ji.
0: Ah, thank you so much for that. Aur pata hai aaj kaun sa wala geet suna chahunga?
2: सर एक फिल्म का नाम है हीना और गाने के बोल है बेदर्दी तेरे प्यार ने दीवाना कर दिया।
0: अच्छा क्यों ये वाला गीत सुना जाता है?
2: अच्छा है सर इसलिए
0: अच्छा।
2: है आपके पास?
0: हाँ हाँ बितारते तेरे प्यार ने राइट
2: दीवाना कर दिया और ये नहीं मिले तो फिर सनम फिल्म का इश्क में मेरे रब्बा जाने में क्या कर जाता।
0: नहीं नहीं, नहीं ये वाला है तो मैं ये पता। हाँ
2: जी बहुत बहुत धन्यवाद सर जी।
0: और बताइए किस किस का नाम लेना चाहूंगा?
2: जी सर उनका नाम लेना चाहेंगे, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं। शिवा लोहट जी है, तनुश्री बिटिया है, अंजलि भस्मतारी है, रमेश पात्रे हैं, अमल भस्मतारी है, विमल भस्मतारी है, रमेश प्रजापति जी, पूरन वर्मा जी, राकेश जी है शिमला से, आशुतोष जी हैं, अविनाश जी है, प्रेम सिंह सिसोदिया जी, केसर सिंह राजपूत जी, रामबाबू शर्मा जी, मांगीलाल चंदेल जी, भाईकन मुंडा जी, गंगाधर सावनकर जी हैं, दिलीप पाहुजा जी हैं और श्रीपाल गोयल जी हैं और योगेश जांगड़े जी हैं। इन सबके साथ सुनना चाहेंगे सर। आपको भी डेलीकेट रहेगा, जो कोई मैं फाइव श्रोता सुने सभी को डेलीकेट है सर।
0: क्या बात है, थैंक यू सो मच। तो भगवान सिंह वर्मा
2: जी बहुत बहुत
0: सो मच, सुनिए आपका रिक्वेस्ट सॉन्ग।
2: धन्यवाद,
0: यू वेलकम। तो माय डियर फ्रेंड्स, আমি খানলাগা রেগুলার লিসনার থাকি আছে ভগবান সিং বর্মা মধ্যপ্রদেশ পৰা। আমি খানি তাই রিকুয়েস্ট করলে গীত শুনি হব আর তাই নাম লসকে ডিউকি।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र बिहार, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरलम के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्य शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स

0: सहयोग और सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से भारत ग्रीस आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस अतिरिक्त निवेश का उपयोग NIIF के अवसंरचना केंद्रित दूसरे कोष की स्थापना के लिए किया जाएगा। अवसंरचना कोष द्वितीय के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। इससे परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल और शहरी अवसंरचना तथा ई मोबिलिटी जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के अंतर्गत अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। ये विधेयक असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने, असामाजिक तत्वों की कड़ी सजा देने के उद्देश्य से पारित किया गया है। चर्चा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अधिनियम बनने के बाद इन विधेयकों को असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती से लागू किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में DRDO को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन DFP 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि DFP 2026 अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकियों के तेजी से उत्पादन रक्षा बलों में उनके समावेश को सुगम बनाएगा। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशक से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इस बीच जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा।
1: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चुरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकताओं की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि समृद्ध और विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब गांव समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित हों। नई दिल्ली में आयोजित 2 दिन के राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि गांव केवल लाभार्थी ही नहीं बल्कि विकास के प्रेरक शक्ति भी हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। श्री नड्डा ने कहा कि इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: Applications launch is going to play a very important role.
3: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 सालों में कई नई पहलें शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है और उन्हें देश में सस्ता और सुलभ बनाया है। इसमें 62 करोड़ लोग शामिल हैं और अब भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है।
2: लार्जेस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर।
0: श्री नड्डा ने कहा कि देश भर में लगभग 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं। आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में उन्होंने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर नागरिकों के लिए प्राथमिक संपर्क केंद्र है जो पहले, दूसरे तथा तीसरे स्तर के स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक मजबूत सेतु का काम करते हैं। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के गुना जिले के अपने 4 दिन के दौरे के दौरान लगभग 350 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पर्यावरण, सिंचाई

0: रेलवे, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास से संबंधित हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से दो दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद से त्रिपुरा और नई दिल्ली के बीच की दूरी काफी कम हो गई है। उन्होंने बताया कि बेहतर संपर्क के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। आज अगरतला के राजकीय अतिथि गृह में समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ सबके विकास के दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध है। दिल्ली मंत्रिमंडल ने आज दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी। इसे 1 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह नीति पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों, विशेष रूप से शून्य उत्सर्जन वाहनों पर केंद्रित है। हमारी संवाददाता सौम्या शरण की रिपोर्ट।
1: श्रीमती गुप्ता ने बताया कि अगले 4 वर्षों में इस नीति पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं 8,000 करोड़ रुपए की लागत से 30,000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन और अन्य अवसंरचनात्मक तैयारियां की जाएंगी,
2: जिसमें हमने खरीद पे प्रोत्साहन दिया है, स्क्रैपिंग पे प्रोत्साहन दिया है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है और रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन की छूट भी इस पॉलिसी में दी गई है।
1: वहीं 30 लाख रुपए तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस नीति से दो पहिया, तिपहिया, चार पहिया वाहन और N1 ट्रक जैसी वाहन लाभान्वित होंगे। इससे परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी और दिल्ली एक स्मार्ट सिटी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगी।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी भी निवेश योजना, उपकरण या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन कई खबरों का भी खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि भारत के पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी वाले होर्डिंग लगाए गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। इकाई ने कहा कि खुदरा पेट्रोल दुकानों पर ऐसा कोई होर्डिंग नहीं लगाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे NewZone AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 2400 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा होर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के एक नए दौर की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान ने इस संबंध में बैठक का अनुरोध किया है और ये बातचीत दोहा में होगी। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है कि उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा है कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। दोहा में तकनीकी वार्ता की खबरों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच सीधी उड़ान सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। क्षेत्रीय संघर्ष के बाद से 28 फरवरी से दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क निलंबित था। देश में इस वर्ष मई में वार्षिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP पर आधारित औद्योगिक उत्पादन 5.1% की वृद्धि हुई। बीते अप्रैल में देश के औद्योगिक उत्पादन 4.9% की वृद्धि हुई थी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 372 अंक घटकर 76,728 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 110 अंक कम होकर 23,946 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 14 पैसे कमजोर होकर 94 रुपए 54 पैसे पर बंद हुआ।
0: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए स्थान पक्का कर लिया है। आईसीसी ने पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज ब्राजील का सामना जापान से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं देर रात 2 बजे जर्मनी और पराग्वे आमने सामने होंगे। अमेरिका के फुलटन में किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के उपविजेता रहे। पुरुष सिंगल्स फाइनल में श्रीकांत को चीनी ताइपे के सू लियांग से हार का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में कल तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी तेज बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani and I'm Saira Mushtaba with the news at 9. The headlines. President Draupadi Murmu confers gallantry awards at Defence Investiture Ceremony in Rashtrapati Bhavan. Prime Minister Narendra Modi says 50-year-old partnership with Seychelles will now advance through innovation, sustainability and shared prosperity. Returns home after successful visit to island nation. Cabinet approves additional investment of 30,000 crore rupees in National Investment and Infrastructure Fund to accelerate infrastructure investment. West Bengal Assembly passes Public Safety and Control of Anti-Social Activities Bill to curb anti-social activities. IMD issues orange alert for very heavy rainfall in parts of northeast, sub-Himalayan West Bengal, Bihar, Goa, Maharashtra, Karnataka and Kerala tomorrow. And Indian women's cricket team earns one of the first berths for 2028 Olympics. And now the news in detail. President Draupadi Murmu conferred gallantry awards to the personnel of the Defence Forces and the Indian Coast Guard during the Phase 2 of Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Vice President C.P. Radhakrishnan, Defence Minister Rajnath Singh, along with other Union Ministers and senior officials of Armed Forces, were also present on the occasion. A report.
5: The President conferred 7 Sarvottam Yudh Seva Medals, 30 Param Vishisht Seva Medals, 12 Uttam Yudh Seva Medals and 56 Ati Vishisht Seva Medals at the ceremony. Some recipients of the Ati Vishisht Seva Medal included Air Marshal Tarun Chaudhary, Lieutenant General Neeraj Varshne and Vice Admiral Anand Vai Sardesai. Recipients of the Sarvottam Yudh Seva Medal included Lieutenant General Pratik Sharma, Air Marshal Nagesh Kapoor and Lieutenant General Rajiv Ghai. Among those honored with the Param Vishisht Seva Medal were Vice Admiral Sanjay Vatsayan, Lieutenant General Manjinder Singh and Air Marshal Ashutosh Dixit. Recipients of the Uttam Yudh Seva Medal included Lieutenant General Dhiraj Seth, Air Marshal Manish Khanna and Vice Admiral Tarun Sopti. The medals were awarded to personnel for distinguished service of an exceptional order with Soumya Sharan, Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
4: Prime Minister Narendra Modi has said that his visit to Seychelles has yielded significant results that will enhance the friendship between both the nations. The Prime Minister returned home after concluding his 3-day successful visit to the island nation. In a social media post, he said, "Over the last 50 years, the relationship between the two nations has been characterized by profound trust and mutual advancement, whereas the forthcoming 50 years will be shaped by innovation, sustainability and collective prosperity." Our correspondent has more on Prime Minister's visit. On the final day of his visit, Mr. Modi visited and offered prayers at Navashakti Vinayagar Temple in Victoria. He also met the members of

0: সব সরকার হেলথ সেন্টারসে বিপি লাগা ফ্রি চেক আপ ট্রিটমেন্ট আর কাও ভাল থাকবা মদত দি আছে বিপি লাগা কোনবা সওয়াল থাকিলে টোল ফ্রি নম্বর 1800 116666 কল করবি জানকারী এম টি ই পি পৰা দি আছে।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
3: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: सर 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
1: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे,
6: आरबीआई कहता है।
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: Hello, good evening, my dear friends, my lovely and awesome listeners. A warm welcome to RJ's Choice in the Film Songs program. Apni khalaga host aur dost RJ tum jil logade agashwani kohima FM Tragoban 103 megahertz te. Well, my dear friends, for the next about 23 minutes ami khani ekta olop slow down korina and unwind korina, we will enjoy some handpicked collection of Bollywood melodies that have touched millions of hearts. Ajilaga playlist to hile apni khan ge ekta romance, nostalgia, asha aur soulful emotions, songs that are as beautiful today as when they were first heard. Itulaka sob ani diya hoto, my dear friends, apni khan kore thakle bi relax korbi, turn up the volume and let this magic of Hindi film music brighten your night. Aji ami khan laga poila প্লেলিষ্ট ইয়াতে শুরু করি কিনা আমি এখন শুনি হব কে কে লাগা আওয়াজতে গ্যাংস্টার ফিল্মরা, মিউজিক দিছে প্রীতম, লিরিক্স সাইদ কাদরি। শুনি কিনা এনজয় করবি, ইভেন আফটার সো মেনি ইয়ার্স এইটো গীত হি একটা ওয়ান অফ দ্য মোস্ট বলিউডস লাভড রোমান্টিক সংস নিচনা ইয়াতে থাকি আছে। শুনি কিনা এনজয় করবি, মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস।

Well, my dear friends, अब निखन once upon a time in Mumbai film ब्राव निखन गीत होने देखे और मैं उम्मीद करे सब निखन सोपी मैं जोहान लगे मन भाल गीत होने की ना enjoy करे देखे बा यार next गीत

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
3: आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: जटायु से रावण द्वारा सीता हरण की जानकारी मिलने पर दोनों भाई ऋष्यमूक पर्वत के समीप पहुंचते हैं, जहां हनुमान जी से भेंट होती है। हनुमान जी दोनों भाइयों को सुग्रीव, जामवंत और समस्त वानरी सेना से मिलवाते हैं। श्री राम अपने आने का प्रयोजन बताते हैं। श्री राम की शरण में आए हुए सुग्रीव अपनी वानरी सेना को माता सीता की खोज के आदेश देते हैं, परंतु सागर को लांघकर लंका जाना ये कार्य तो केवल हनुमान जी ही कर सकते हैं। जामवंत, अंगद और वानरी सेना हनुमान जी को जागृत करते हैं।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।